0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
3: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
6: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
7: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
8: जागते रहना, जागते रहना.
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सबसे रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
9: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
8: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना. और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
8: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
5: आई बीन टास्क टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
6: आर यू पीपिंग टॉम?
5: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कबर का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कबर को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश।
8: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924 466771, mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
1: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदन उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए। वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं, प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड, मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर, 633 हालिफैक्स रोड, लिविसेज, WF158HJ। नंबर मत भूलिएगा 07977317760।
2: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस, वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस।
3: आईड बीन टास्क टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
4: आर यू पीपिंग टॉम?
3: सैडली इट वाजंट इन देयर, so I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
5: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
4: Come up and see me sometime.
3: Case closed.

0: Yo.
1: Hi, Robbie.
0: DJ Robbie Worldwide, UK to the whole. It's your boy, Kami Kane.
2: पिछे ना तू गेड़े जे मार नी पिछे आ मौत ते डबना असला एज तो वादे आ चल दे पर चे साथों नी

0: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
3: Abhi call kijiye 01484-549947.
0: Training will be provided.
5: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
6: Are you peeping, Tom?
5: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: जागते रहना, जागते रहना.
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
9: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
8: हां ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
8: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
6: आर यू पीपिंग टॉम?
5: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: Oye, Aryo, oye, hon sari umar friendy bane rehna. Aaj kehde dil di gall. बना दे साडी भाभी।

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: From the Sky News Centre at 3. Fewer empty planes could run under temporary government plans to mitigate against possible jet fuel shortages. Airlines could be allowed to reduce schedules in advance and run fewer, fuller flights rather than cancelling empty ones at the last minute. Strait of Hormuz disruption caused by the Iran war is also affecting new business owner in Dubai, Victoria Coleman.
2: Shipping costs have gone up 40% and will take double the time to get from China to the UK, so it's kind of a really tricky place for young businesses, because it's like, do we pass this on to the consumer?
1: Donald Trump says he's reviewing Iran's latest proposal to end the war. The US president also told reporters there's a possibility the US could restart strikes. A 25-year-old man's fighting for his life in hospital after a shooting in South London early Saturday morning. Three others were also wounded after shots were fired from a vehicle in Brixton. A 19-year-old man's been charged with false communications relating to a bomb hoax at a Peter Kay gig in Birmingham. The Utilita Arena had to be evacuated on Friday night after reports of a suspicious bag. In sport, Arsenal have moved 6 points clear at the top of the Premier League with a 3-0 victory over Fulham. Newcastle eased some pressure on manager Eddie Howe thanks to a 3-1 win against Brighton. His side ended a run of four straight defeats.
3: That was a massive win for us. We knew it. Everyone knew it. I think we've been building towards that for a few weeks. I think the training has been really strong, it's been really committed, very competitive, and I'm a big believer that you always end up getting your rewards for that if your work continues to be strong.
1: West Ham's 3-0 defeat at Brentford hit their survival hopes, while Livingston are relegated from the Scottish Premiership. Kilmarnock beat Dundee United 3-0 to send them down. And the Miami Grand Prix has been brought forward by 3 hours because of a forecast thunderstorm to 6 p.m. at UK time. Formula One World Championship leader Kimi Antonelli secured pole position. Red Bull's Max Verstappen was second. That's the latest. I'm Jenny Barsby.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: Fast Track Solutions, supporting communities around the globe.
6: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
7: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
8: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
9: Jagte rehna, jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga bhai?
9: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske saath साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
10: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
9: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
9: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700

0: दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM.
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
5: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
8: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
9: Abhi call kijiye 01484-549947.
4: Training will be provided.
10: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
11: Hey, you peeping Tom.
10: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
12: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
11: Come up and see me sometime.
10: Case closed.
4: सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी, ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश.
1: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA. टेलीफोन 01924 466771. Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: बच्चों कल का सबक याद है
1: हां जी याद है
0: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: चांदी चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
0: फिर से बोलो
1: चाचा जूलर्स
0: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
2: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
3: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
4: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
6: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
7: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
8: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
6: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
9: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
10: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
11: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
12: Are you peeping Tom?
11: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.

0: दिन रात
1: दिन रात
0: दिन रात
1: आपके साथ
0: आपके साथ
1: रेडियो संगम
0: रेडियो संगम रेडियो
1: संगम। अब वक्त हुआ जाता है अजान फज्र का, आप अपनी मकामी मस्जिद के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM।
1: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
2: हाँ जी याद है।
1: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: चांदी चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: फिर से बोलो,
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: चूड़ी, कंगन, झुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
3: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
4: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE। टेलीफोन नंबर 01422342553। गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।
5: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
6: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
9: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
11: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
12: Are you peeping Tom?
11: Sadly, it wasn't in there. So, I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then, it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.

0: को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM.
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
5: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
8: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड. इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: From the Sky News Centre at 5. The government's announced plans to deal with a possible shortage of jet fuel caused by the war in Iran. They include allowing airlines to run fewer empty planes and also let them hand back takeoff and landing slots. Travel expert Simon Calder explains why that's important.
2: If you look, for instance, at Lufthansa, 10 flights a day from London Heathrow to Frankfurt, with demand soft because people don't want to travel so much, it would be really sensible if they reduced that, say, to 8, which would also save aviation fuel.
1: Meanwhile, Donald Trump says he's reviewing Iran's latest proposal to end the war. The president also told reporters there's a possibility the US could restart strikes. A teenager has been charged in connection with a bomb hoax at a Peter Kay show in Birmingham. The Utilita Arena had to be evacuated on Friday night after reports of a suspicious bag. 19-year-old Omar Majid has been charged with false communications relating to a bomb hoax. Sir Keir Starmer's calling on his party to be more united to make life better for working people. Amid speculation of an impending leadership challenge, the Prime Minister's urged his party not to descend into political infighting like the previous Tory government. Here's our political correspondent, Lucy McDade.
3: Prime Minister pretty much making the case for stability of leadership. And a warning to his MPs that unity is what's needed if they want to deliver their plan for change.
1: Sport now, and Arsenal stretch their lead in the Premier League title race to 6 points with a 3-0 victory over Fulham. But West Ham's hopes of avoiding relegation were dealt a blow with a 3-0 defeat at Brentford. They'll fall into the bottom three if Tottenham beat Aston Villa tonight. And the Miami Grand Prix has been brought forward by 3 hours because of a forecast thunderstorm to 6 p.m. at UK time. Formula One World Championship leader Kimi Antonelli starts on pole position. Red Bull's Max Verstappen is second on the grid. What's the latest? I'm Jenny Barsby.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
6: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
5: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
7: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
8: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
9: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
10: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
11: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
12: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
13: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
14: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
15: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
16: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
17: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
18: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
19: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
20: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
21: आई'd बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
22: आर यू पीपिंग टॉम?
21: सैडली, इट वाजंट इन देयर। सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
23: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
24: Come up and see me sometime.
21: Case closed.
25: जागते रहना, जागते रहना।
26: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
25: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
26: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
25: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
26: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
25: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।

0: बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
5: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
6: आर यू पीपिंग टॉम?
5: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? की प्लीज काउंसिल वेलनेस सर्विस तमने दरेक पगला पर टेको आपवा माटे गई छे। जो तमे धूम्रपान छोड़वा माटे तैयार छो तो अमारी मैत्रीपूर्ण टीम मदद करी शके छे। अमे धूम्रपान नी तृष्णाओ घटाडवा अने छोड़वानो सरल बनाववा माटे पेज वेप्स ने गम सहित मफत धूम्रपान बंद करवा माटे सपोर्ट प्रदान करिए छे। धूम्रपान छोड़वाथी तमारा स्वास्थ्य मां सुधारो थाय छे, तमारा परिवार नु रक्षण थाय छे अने खरेखर महत्वनी बाबतो माटे तमारा पैसा बचावे छे। अने अमारा समर्थन थी તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે। શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે। આજે જ cuckleswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0959 પર કોલ કરો। કિર્કલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ કાયમ માટે છોડી દો।
0: इन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कबर का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कबर को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश।
4: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924 466771, mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है
3: हाँ जी याद है
2: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: चांदी चाहिए
3: हाँ जी चाहिए
2: कहाँ से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
2: फिर से बोलो
3: चाचा ज्वेलर्स
2: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहाँ से लोगे
4: चाचा ज्वेलर्स
5: केड़ी ऑफर आई के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
4: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
1: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
2: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
5: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
4: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
1: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
6: आई'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising
7: are you peeping tom
6: sadly it wasn't in there so I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.
9: Jagte rehna. Jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga, bhai?
9: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sabse red hoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai. Alu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka, aur iske saath saath thandi lassi, kadak chai, aur special halwa puri.
10: Stop! Arre wah! पराठा स्टॉप
9: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
9: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484-542-700
11: अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा अरबाब नजर को

पैदा हुआ आप सब पैदा कोई मुमताज नबी, आप पर खत्म हुई इज्जत आला नसबी, शोर है खल्क हुई आपकी वाला हसबी, मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जन बात फिदायच अजब खुश लकदी, ऐसा बा तेरे मदीने की तरफ हो जो गुजर, तो मेरी सिम्त से आदाब पे यूं करके नजर, बल्कि सर रख के दरे पाक पे बादी दायतर, अर्ज करना बहुदूरे शहे हर जिन्नो बशर, चश्मे रहमत बकुशा सुए मनंदाज नजर, आय कुरैशी लकबी हाशमी और मुत्तलबी, ऐसी खूबी न किसी में देखी, चांद शक हो गया उंगली जो उठी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदि बेजादारी, अंच खूबा हम धारंज तो तनहादारी, मैंने ऐसी खूबी न किसी में देखी, चांद शक हो गया उंगली जो उठी, वाशम सुरखे जेबा है तेरा, तू नूर फिशाने आलम है, वल्लैल है तेरी जुल्फे दोता, तू रह तो जाने आलम है, तू फख्र हुआ आदम के लिए, तू रहमत है आलम के लिए, तखलीक हुआ तू करम के लिए, तू फैज रसाने आलम।

ख्वाबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, ख्वाबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, जिब्राइल ने आके सुनाई खबर। चलिए चलिए शहंशाह वाला गौर, हक शौक लक आज की रात है, जागो जागो शहंशाह दुनिया दी, उठो उठो जरा अलामा काके मकी, देखो देखो यार हाजिर है रूहुल अमीन, रूह तुम पर फिदा आज की रात है, बर्क से तेज है बर आकाब का, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका, अब नहीं देखा जाता फिर आकाब का, जल्द चलना ना वह आज की रात है, बागे आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब रहमत उठा आज की रात है, जज्बे शौक तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बन आज की रात है, इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू सरस्ते महकते चले, चांद तारे जलू में चमकते चले, कहकशां ज़ेर पर आज की रात है, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। जब सवारी अर्श पे पहुंची, इन्होंने क्या लिया उसने क्या दिया, समाज फरमाइए। उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शिफात के दफ्तर खुले, कह दिया देख है फैज़ के दर खुले, मांग जो मांग ना आज की रात है, शहने अर्ज की कि उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है, फिर कहा अपने ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है के देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है, तू न मुझसे अलग मैं न तुझसे अलग, और जो तुझसे गया वो मुझसे गया, और जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, बस यही फैसला आज की रात है, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे

मेरे बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो मांगो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, मांगो अपने रब से मांगो। लीजिए मैं मांगता हूँ। अय अल्लाह कैसा बैठा देखता है जैसे देखा ही नहीं, और कैसा बैठा सुन रहा है जैसे सुनता ही नहीं, मियां तेरे चुप रहने से तल जाऊं तल जाऊं तल जाऊं, मैं वो साहिल नहीं बल्कि दामने उम्मीद भर, या कह दे इस काबिल नहीं तो आई निदा कि आए बंदे मेरे खजाने में वहदत की वहदत, वहदत की वहदत, वहदत की वहदत, वहदत की वहदत, वहदत की वहदत, वहदत की वहदत, और इसके सिवा क्या है, जा लेना है अगर तुझको तो जा ले ले मोहम्मद से क्यों, शराफत उनकी घर की है, लताफत उनकी घर की है, हशमत उनकी घर की है, शौकत उनकी घर की है, शरीयत उनकी घर की है, तरीकत उनकी घर की है, हकीकत उनकी घर की है, मारिफत उनकी घर की है, नबुवत उनकी घर की है, इमामत उनकी घर की है, खिलाफत उनकी घर की है, विलायत उनकी घर की है, शुजाअत उनकी घर की है, सखावत उनकी घर की है, शहादत उनके घर की है।

जब शाहे हिजाज आया, बंदों ने कहा बंदों से वो बंधन आवाज आया। अवैस को जब देखा, अवैस को जब देखा, सुक्का ने फलक बोले वो देखो मोहम्मद का एक उश्ताए नाज आया। इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। शबे मेराज मस्जिद अक्सा में हुजूर ने इमामत फरमाई, अंबिया ने इख्तिदा की। इसकी मंजर कशी करता हूँ और मकाम सजदा पेश करता हूँ, मुलायजा हो। इमाम बने आका मोहम्मद इमाम, नबियों ने सफे बांधी, ईसा सबसे पीछे, मूसा उनके आगे, अब वक्त सजदा, ईसा का सर मूसा के कदमों में। मोहम्मद इमाम, नबियों ने सफे बांधी, ईसा सबसे पीछे, मूसा उनके आगे, अब वक्त सजदा, ईसा का सर मूसा के कदमों में, मूसा का सर यहया के कदमों में, यहया का सर ज़करिया के कदमों में, ज़करिया का सर यूनुस के कदमों में, यूनुस का सर यूसुफ के कदमों में, यूसुफ का सर याकूब के कदमों में, याकूब का सर अय्यूब के कदमों में, अय्यूब का सर इसहाक के कदमों में, इसहाक का सर इस्माइल के कदमों में, इस्माइल का सर इब्राहिम के कदमों में, इब्राहिम का सर सहले के कदमों में, सहले का सर खिज्र के कदमों में, खिज्र का सर ज़ुल्क़र्नैन के कदमों में, ज़ुल्क़र्नैन का सर सुलेमान के कदमों में, सुलेमान का सर दाऊद के कदमों में, दाऊद का सर इदरीस के कदमों में, इदरीस का सर लूत के कदमों में, अरे लूत का सर नूह के कदमों में, और नूह का सर आदम के कदमों में। इतने सर सजदे में जाएं तब एक

बशर है। ऐ अल्लाह, कोई हमसर नहीं तेरा न कोई सानी, कोई हमसर नहीं तेरा न कोई सानी है। माँ सिवा तेरे हर एक चीज यहाँ फानी है। ऐ अल्लाह, कोई हमसर नहीं तेरा न कोई सानी है। मेरे वहमो गुमा से भी बाहर है तू, मेरी हस्ती है क्या मैं तो कुछ भी नहीं। ऐ अल्लाह, कोई हमसर नहीं तेरा न कोई सानी है, और माँ सिवा तेरे हर एक चीज यहाँ फानी है। हाँ मगर इश्क

जहाँ रहा बुनियाद, हाँ वही इश्क जो कहता रहा रब्बे अरनी, और हाँ वही इश्क जो करते थे अवैसे करनी, और हाँ उसी

गौर है दिल, मेरा इश्क मोहम्मद का तलब गौर है दिल, क्योंकि बेताब उमंगों से हरदम, बेताब उमंगों से हरदम धक धक मेरा सीना होता है, एक फूक सी उठती है दिल में जब याद मदीना होता है, मेरा इश्क मोहम्मद में गिरफ्तार है दिल, आए जन्नत तुझ में हूर कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं।

कोई निस्बत नहीं, लेकिन इश्क मोहम्मद में गिरफ्तार है दिल मेरा, इश्क मोहम्मद का तलबगार है दिल। तू अल्लाह मैं बंदा, लेकिन मेरा इश्क मोहम्मद में गिरफ्तार है दिल मेरा, इश्क मोहम्मद का तलबगार है दिल। अब तू अल्लाह मैं बंदा, तू नूर सरापा मैं खाक सरापा, कोई निस्बत नहीं, लेकिन तेरा प्यारा भी वही कौन,

लेकर सुए तायफ जाए। ऐ अल्लाह तूने देखा मेरे महबूब ने पत्थर खाए। ऐ अल्लाह खैबरो बदरो उहद

अल्लाह ही जाने कौन बशर है। जब कौम ने मूसा से करी ये गुफ्तार, जब कौम ने मूसा से करी ये गुफ्तार, ऐ मूसा दिखला दे सरे तूर हमें जलवे गफार। जब कौम ने मूसा से करी ये गुफ्तार, ऐ मूसा दिखला दे सरे तूर हमें जलवे गफार। क्योंकि देखेंगे खुदा को तो हम तस्लीम करेंगे, और बिन देखे खुदा की न हम तज़ीम करेंगे। तब हजरत मूसा ने सरे तूर ये जाकर

कलीम शर्मसार हो गया, उधर रहमत को जोश आया के इकरार हो गया। अब हुक्मे खुदा से मूसा ने 70 चुने बशर, परहेजगार मुत्तकी साहिबे नजर, खुश थे कलीम ये के मुरादे दिली मिली, आगे नबी पीछे जमाते बशर चली, एमन में पहुंचे ये तालिबे दीदार हो गए, जलवे के देखने को ये तैयार हो गए, मूसा नबी 70 बशर, चमकी उधर से बार तूर जला, मूसा गिरा बशर मारा, चमकी उधर से बार तूर जला, मूसा गिरा बशर मारा, देखोगे उतना जितनी बुलंदी नजर में है, खुद सोच लो।

0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
1: From the Sky News Centre at 7. Fewer empty planes could run under temporary government plans. Airlines could be allowed to reduce schedules in advance and run fewer, fuller flights rather than cancelling empty ones at the last minute. Strait of Hormuz disruption and the Iran war is also affecting new business owner in Dubai, Victoria Coleman.
2: Shipping costs have gone up 40% and will take double the time to get from China to the UK. So it's kind of a really tricky place for young businesses because it's like, do we pass this on to the consumer?
1: Meanwhile, the US president says he'll look at Iran's latest proposals for peace. But Donald Trump's posted on Truth Social saying he can't imagine the measures would be acceptable for him to agree to an end to the war. Pressure's mounting on the Prime Minister to ban pro-Palestine marches over concerns they put the Jewish community in danger. That's what the Tories want, while Sir Keir Starmer wants to crack down on the chants heard at demonstrations.
3: When you hear some of those chants, then clearly there should be tougher action in relation to that. Many people in the Jewish community have said to me, it's the repeat nature, it's the cumulative effect. Now, I accept that, which is why we intend to deal with cumulative effects.
1: Two Jewish men were stabbed in Golders Green in North London on Wednesday. Pro-Palestine campaigners say there isn't a connection between peaceful protests and the recent violence. A teenager's been charged after a Peter Kay gig in Birmingham had to be evacuated on Friday night. The 19-year-old's accused of false communications relating to a bomb hoax after reports of a suspicious bag being left at Utilita Arena. Arsenal have extended their lead at the top of the Premier League table after a 3-0 victory against Fulham last night. West Ham's hopes of avoiding relegation were dealt a blow after they were beaten by the same scoreline at Brentford. And the Miami Grand Prix will begin earlier than usual today because of the weather. Unexpected storms brought forward the start time. That's the latest.
4: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
5: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
6: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
7: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549947. That's 01484-549947.
8: Lanika!
9: Lanika!
10: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. ये लानिका कौन है?
8: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो. आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे.
10: अच्छा, लानिका, वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं?
8: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
10: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
8: कंजूस कहेंगे उनका बफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10s 11.99 एंड अंडर 4s फ्री
10: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
8: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
7: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
9: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
11: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
12: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
9: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
9: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
13: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
14: अभी कॉल कीजिए 01484549947
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
15: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
16: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
15: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
16: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
15: Download the LEMFI mobile app today.
16: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना

औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं रेडियो संगम की निश्रियात 107.9 FM हडर्सफील्ड की खूबसूरत वादियों से। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा खलूस भरा मोहब्बतों भरा चाहतों भरा अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वक्त जहां पर भी आप हमारी निश्रियात सुन रहे हैं, खुदा करे कि मेरी आवाज़ ने आपको खैरियत से पाया हो और दुआ रब कुदूस से कि आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। प्रोग्राम की शुरुआत हमने उस परवरदिगार के नाम से की जो सारी कायनात का खालिक मालिक है, सारे जहान का पालनहार है और जिसके कब्जे में हम सब की जान है। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के वक्त के मुताबिक सुबह के 7:14:40 हुआ चाहते हैं। मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह सुबह के 10 बजे तक रहेगा और आपसे मुखातब है आपका अपना एमएच शदाई। और आज मई महीने की 3 तारीख और दिन है संडे एतवार 2026। मौसम की बात करते चलें तो मौसम इज़ नॉट गुड एट ऑल, इट्स रेन रेन रेन वेट वेट वेट। और इतनी सर्दी नहीं है लेकिन यह है कि पिछले अगर चंद दिनों से कंपेयर किया जाए आज के दिन को तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। पिछले 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, टेम्परेचर्स बीन अबाउट 20 degrees और सन वाज शाइनिंग और हर तरफ सब्जा ही सब्जा, फूल खिले, चेहरे खिले हुए थे और हर बंदा खुश था। जब सूरज इस मुल्क में निकलता है समीने कराम तो हर इंसान लाइवली महसूस होता है। और आजकल तो जिस तरह स्प्रिंग है जनाब, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, फूल ही फूल हैं, बारों में बहार भी है और बागों में भी बहार है। और बेहतरीन जहां पार्क हैं, बाग हैं और छुट्टियां भी हैं, बैंक हॉलीडे है मंडे और लॉन्ग वीकेंड है सैटरडे संडे एंड मंडे, बैक टू द नॉर्मल। लोग स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों पर अपने काम काजों में हो जाएंगे क्योंकि सैटरडे भी छुट्टी थी, संडे भी, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, बैंक हॉलीडे यानी कि मे डे, मजदूर डे, वर्करों का दिन, हमारे जैसे वर्करों का दिन जिनको कोई छुट्टी इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। चलिए जी, इंशाल्लाह के छुट्टी का दिन है लेकिन हम छुट्टी तो नहीं कर सकते, साफ जाहिर है। तो ये थे जनाब हाल हवाल। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह सुबह के 10 बजे तक रहेगा और इस वक्त आपसे मुखातब है आपका अपना एमएच शदाई। और अगर आप भी महफिल में शिरकत करना चाहते हैं तो स्टूडियोज हॉटलाइन नंबर रहेगा 01484817705 के रास्ते आप पा सकते हैं। और मैसेज और डेडिकेशन के लिए नंबर हमेशा के लिए वही है 07444202155 के रास्ते आप अपने मैसेज और डेडिकेशन स्टूडियो तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं www.radiosangam.co.uk के जरिए और ऑफ कोर्स अप्स के जरिए आप हमें क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं जस्ट गो डाउन टू द गूगल स्टोर अप स्टोर, टाइप द रेडियो संगम एंड ऑफ कोर्स यू विल एबल टू लिसन क्रिस्टल क्लियर, प्रोवाइडिंग के आपके फोन के ऊपर इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। आपका इंटरनेट कोई नहीं यूज होगा, इंटरनेट पेड बाई रेडियो संगम। आपको सिर्फ इंटरनेट की सहूलत होनी चाहिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए आपके स्मार्टफोन के ऊपर या किसी फ़ोन के ऊपर भी। लेकिन आपके कोई जीबी, कोई इंटरनेट और कोई बीजी, कोई खर्चा नहीं आएगा जनाब, खर्चा पे करते हैं रेडियो संगम वाले। तो ये थे जनाब थोड़े बहुत हाल और अवाल। और आप सुनाइए कि आपके हाल और अवाल कैसे हैं और दिन कैसा गुजरा आपका पिछला। और चंद खूबसूरत बातें जो हैं मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपके साथ शेयर करने की। कहते हैं जी, सलामती हो उन नायाब लोगों पर, सलामती हो उन नायाब लोगों पर जो बगैर किसी मफाद के ज़िंदगी में रोशनी बखेरते हैं। कितने लोग हैं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम शमशाद असलम साहब, आप भी हमारे साथ हैं। सलामती हो उन नायाब लोगों पर जो बग़ैर किसी मफाद के ज़िंदगी में रोशनी बखेरते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो लोग हैं लेकिन बहुत
कम लोग हैं जो इस दुनिया में इस मसरूफ तरीन जिंदगी में और इस दुनिया में ऐसे काम भी करते हैं। ये मतलब नहीं कि बिल्कुल हैं नहीं, हैं ज़रूर लेकिन बहुत कम है। और जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होते। जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होते। और घर का सरबरा, जैसा कि ये बातें मैंने चंद आपके गोशो गुजार कल भी शायद की थी, घर का सरबरा पक्षी की मानिंद होता है, चलता रहे तो किसी को एहसास नहीं होने देता और अगर रुक जाए तो सबको पसीना आ जाता है। जो घर का सरबरा होता है वो पंखे की मानिंद होता है, चलता रहता है जनाब, हवा बखेरता रहता है, प्यार बांटता रहता है, चलता रहे तो किसी को एहसास नहीं होने देता और अगर रुक जाए तो सबको पसीना आ जाता है। यानी कि बड़ी खूबसूरत किसी ने मिसाल दी है उस पंखे की। इसी तरह घर का सरबरा भी उस पंखे की तरह होता है। बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है, इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की होती है, इकबाल, अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। ऐसा भी होता है कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ना जाने उनके ध्यान किधर होते हैं। नमाज खुशू खुशू से पढ़नी चाहिए, बड़े तम्मल और सब्र से। ये नहीं है कि बस किसी का जिस तरह बंदा कर्ज देता है तो भागता है उन लोगों से, इसी तरह हम अपने रब के हजूर जब झुकते हैं तो बड़े खलूस नीयत से, खलूस दिल से, दुनिया के तमाम तफक्रात, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियों को आप एक तरफ अलहदा रखकर, जब आप अल्लाह के सरबसजूद होते हैं तो फिर किसी परेशानी की क्या ज़रूरत है। वह गफूरुर रहीम है, कादर मुतलिक है, हर इंसान को जानता है, समझता है और हर इंसान को उसके अतात के मुताबिक वो देता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारी समझ से बलातर हैं। हम इंसान एकदम जनाब फड़क जाते हैं, छोटी सी मुसीबत परेशानी आती है तो हाय ऊकू धूम धावा कर देते हैं जी, कहते हैं जी बस ये सारी मुसीबतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये हमारी सोच है। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को, अपने प्यारों को, अपने इंसानों को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। कहते हैं जी अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब एक माँ, सामीने कराम आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, एक माँ। और गफूरुर रहीम 70 माओं से भी ज़्यादा अगर इंसान से प्यार करता है तो यहाँ आके बात ख़त्म हो जाती है, अगर आप डीप डाउन में थोड़ा सा सोचें तो। चलिए जी, साथ साथ आपसे गपशप भी होती रहेगी लेकिन अब आपको लेके चलेंगे एक खूबसूरत कलाम की जानब। बहुत सारे लोगों ने कल भी ये कहा था जी अगर हो सके तो आज सुबह उस कलाम को पेश किया जाए, और काफ़ी लंबा कलाम है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा सुनवाऊँ। बाज़ुकात मैं आपको सुनवाता रहता हूँ लेकिन मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा ये कलाम लगता है और बहुत सारे दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। ये जो खूबसूरत कलाम मैंने पेश किया था, इसको पेश किया था ब्रैडफोर्ड के इदरीस भाई आपके लिए, मिसेज़ गफ़ार साहबा आपके लिए, पप्पू मोरा वाले आपके लिए, सदीक भाई हैलिफैक्स से आपके लिए, ज़हूर हुसैन मुगल साहब आपके लिए, शमशाद असलम साहब आल द वे इन पाकिस्तान आपके लिए, सावर भाई आपके लिए आल द वे इन पाकिस्तान, और अनीस दाऊद भाई लेस्टर से आपके लिए इस खूबसूरत कलाम को पेश किया था। और यह खूबसूरत कलाम भी आप सब खूबसूरत समातों की नज़र करेंगे, यकीनन आप सबको ये कलाम अच्छा लगेगा। काफ़ी लंबा है जैसा कि मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरे का पूरा सुनवाएं, फिर उसके बाद चंद भूले बिसरे गीत भी आपको सुनवाएंगे। सदाबहार गीत जो होते हैं आप जितनी बार सुने बोर नहीं होते, उस किस्म के गीत मैं कोशिश करूँगा आपको सुनवाने की। फिलहाल चलते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान की खूबसूरत आवाज़।

जी हाँ सामीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत कलाम अभी चल रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बड़ा लंबा कलाम है। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरे का पूरा सुनवाऊँ क्योंकि टेलीफोन लाइन इज़ एब्सोल्युटली चक अप लोग, बहुत सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, ये आप लोगों का बड़ा पना है। लेकिन छुट्टी का दिन है, लोग खराटे भर रहे हैं, सोए हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे प्रोग्राम में भी लोग सुबह सुबह उठ के इंतज़ार करते हैं, आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दुआएँ देते हैं और ख़ूबसूरत बातें करते हैं और ख़ूबसूरत दवाओं से नवाजते हैं। ये भी बहुत कम लोगों को ये चीज़ें मैसर होती हैं, और मेरे जैसे बदनसीब कर लें, नसीब वाला कह लें इंसान को, लोग प्रोग्राम में आते हैं तो प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। बेहद शुक्रिया तमाम दोस्तों और बहन और भाइयों का, और हमारी साथी प्रेजेंटर जनाब किसी तारफ की मोहताज नहीं है, नसरीन अख्तर साहबा से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। वो समझ रही थी कि शायद फ़ोन काम नहीं कर रहा है। इसी तरह मेरे भाई किंग साहब हैं, वो भी मेरे साथ साथ हैं, उन्होंने भी दो बार तीन बार टेलीफोन किया, वो भी यही समझते होंगे कि भाई कहीं सो तो नहीं गया है, प्रोग्राम के लिए तो चला गया है यहाँ से, लेकिन ये है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और आप बिल्कुल मेरे साथ हैं जी। बाज़ुकात बात थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि कुछ लोग प्यार इतना देते हैं कि जी नहीं करता, कि वो कहते हैं जी बात करते रहो, गीत कवालियां नाते तो हम सुनते ही रहते हैं। कुछ लोग मेरी जैसी बद्दी आवाज़ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं, अब क्या रह गया है मेरी आवाज़ में नसरीन साहबा, क्योंकि बस ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है, चाहत है, वरना मेरे अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तो बहुत कुछ है शमशाद असलम साहब के बकौल। बस जी चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, इसी तरह दवाएं देते रहें, दवाएं लेते रहें। बेहद शुक्रिया अज़रा बाजी, ये खूबसूरत कलाम आप भी सुन रही हैं, बाजी के साथ बैठी हुई हैं, आपको आपका भी बेहद शुक्रिया। ये खूबसूरत कलाम जो चल रहा है आपके लिए भी होगा, नसरीन अख्तर साहब आपके लिए भी, मेरे भाई साहब किंग साहब आपके लिए भी, शमशाद असलम साहब आपके लिए भी, और मोरा पप्पू वाले आपके लिए भी, और रहीम भाई आपसे भी बात नहीं हो सकी, और अदरीस भाई ब्रैडफोर्ड से आपके लिए भी यही खूबसूरत कलाम है। चलिए अभी काफ़ी बाकी है, मिलके सुनते हैं। माज़ूर चाहता हूँ मैं बीच में काफ़ी बोल पड़ा, वो इसलिए बोलना मुझे पड़ा कि लोगों को मैंने रसीद देनी है। कुछ लोग शायद समझते होंगे कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा हूँ या फ़ोन में कोई गड़बड़ है। मैं बिल्कुल जनाब, फ़ोन भी चल रहा है और मैं भी चल रहा हूँ। आप मेरे, जब तक आप मेरे साथ हैं तो मुझे चलना पड़ेगा, क्या ख्याल है? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्या ख्याल है?

बहुत ही जबरदस्त कलाम चल रहा है कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है लोग कहते हैं सिर्फ फर्ज अदा करना है ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से तेरे सजदे कहीं तुझके तुझे काफर ना कर दे इकबाल तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दे इकबाल तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है

महफिल भी रोएगी और दिल भी रोएगा जब डूबेगी कश्ती जब डूबेगी मेरी कश्ती तो सारा जहां भी रोएगा इतनी मोहब्बत तकसीम करेंगे हम इस दुनिया में इतनी मोहब्बत तकसीम करेंगे हम इस दुनिया में मेरी मौत पर आशिक तो क्या कातिल भी रोएगा

कोई उम्मीद भर नहीं लाती, बड़ा ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कलाम अभी आप सुन रहे थे। बड़ा लंबा कलाम था और बहुत सारे दोस्तों की ये पसंद भी थी, दिल में उतर जाने वाले बोल थे इसके, अगर किसी की समझ में आ जाए तो। बेहद शुक्रिया रहीम भाई, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे भाई किंग साहब, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। किंग साहब कहते हैं जी कि बस मौसम तो बड़ा बेईमान है, बारिश लगी हुई है और ये मौसम, इस मौसम में क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे खूबसूरत से आलू वाले पकौड़े हों और साथ में चटपटियाँ चीज़ें हों और आराम से बैठ कर घर में जनाब, और साथ में जनाब कड़कदार पराठे हों और कड़कदार चाय हो। हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ऐसी बातें ना करें क्योंकि मुझे प्रोग्राम छोड़कर फिर कहीं आगे पीछे घूमना पड़ेगा इसलिए। और कहते हैं जी आराम से बैठ जाएं और ये साथ में टेबल पे रखें और फिर रेडियो संगम की नशरियात से महसूस होते रहें। बेहद शुक्रिया जी, आप सब देख लें जी, ये हमारे भाई किंग साहब को पैगाम मैंने आप सबको पहुंचा दिया है और अब आप ऐसा करें या ना करें ये आपके ऊपर है। बहुत शुक्रिया जनाब। और मौसम भी अब कहते हैं जी इसको, आप इस मौसम को खूबसूरत मौसम भी आप कह सकते हैं, आशकाना मौसम भी कह सकते हैं और मौसम बेईमान भी कह सकते हैं जो मर्जी आप इस मौसम को नाम दें जी। पिछले चंद दिनों में तो खूबसूरत मौसम था, लेकिन मौसम ऐसे मौसम भी अच्छे होते हैं, बाहर बंदा थोड़ा सा खड़ा रहे, थोड़ा सा भीग जाए, बाल भीग जाएं, कपड़े भीग जाएं, फिर बालों को थोड़ा सा ठंडा लगा दें, जो खासकर ख्वातीन होती हैं जनाब, जब बाल भीगते हैं तो कुछ ख्वातीन को बड़ा मज़ा आता है, कुछ को कुछ तो कहते हैं जी बस सर्दी लग गई है, सर का दर्द हो गया, बुखार चढ़ गया है, बाल भीग गए हैं। और कुछ लोगों के जब बाल भीगते हैं तो उनको बड़ा सुरूर आता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा प्यार आता है, जिनके बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, खूबसूरत बाल होते हैं, जब बाल भीगते हैं तो जब उनको छंडा मार के सर से जनाब पीठ तक बाल जाते हैं तो फिर ना जाने दिल में क्या क्या अटखेलियाँ सूझती हैं। और मार पड़ेगी मिस गफार से मुझे, बाकी तो डर किसी से नहीं लगता मुझे। कहती हैं कि तूने बाज नहीं आना है सुबह सुबह, तो मैं या वो तुतका लेकर लंगरी में जिससे वो कूटते हैं चीज़ें, तो मैं आके बाहर खड़ी हो जाऊंगी और बताऊंगी नहीं कि मैं कौन हूँ, बुजर दबाऊंगी, सीधी ऊपर आ जाऊंगी, दो चार मारूंगी तेरे सर के ऊपर, फिर तुझसे पूछूंगी कि तू बता के तेरे बाल कैसे हैं और तुझे सुरूर आता है या कि नहीं आता है। मिस्टर गफार साहब मैं क्या करूं, बाहर लोग बैठे हुए मुझे मशवरे देते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो फिर कहना पड़ता है ना, क्या ख्याल है। कहती हैं तू लोगों के मशवरे कम लिया कर, अच्छे मशवरों पर अमल किया कर। तो चलिए ठीक है जी, ऐसा ही हम करेंगे। बड़ी प्यारी बहन है जी, अच्छे मशरूम से नवाजती है और इनसे डर भी बहुत लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ जनाब, मैं और मेरी तनहाई और दीवारें। नहीं जी मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ आप सब लोग मौजूद हैं। अब हम अपने प्रोग्राम का टेम्पो बदल देंगे, आपको पता ही है जो मेरे इंट्रो होते हैं दो, इनके बाद फिर हम आपको अच्छे अच्छे और खूबसूरत गीतों की तरफ लेके जाते हैं। और बड़ा खूबसूरत गीत है, उदित नारायण का साथ देंगी अलका याग्निक, और कहते हैं जी फिल्म का नाम है हम जी। चलिए जी फिल्म का जो भी नाम है वो देखेंगे बाद में, गीत बड़ा ही प्यारा है, हम यार हैं तुम्हारे, चलिए मिलके सुनते हैं।

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: ਮੈਂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
3: ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
2: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
3: ਹੈ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
2: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
3: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
2: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
3: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
2: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
4: ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਰਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
6: Jagte rehna, jagte rehna.
7: So jaunga to kya hoga bhai?
6: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka aur iske saath साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
7: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
6: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
7: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
6: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
8: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
9: आर यू पीपिंग टॉम
8: सैडली wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
8: Case closed.
0: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
11: Three if Tottenham beat Aston Villa tonight. And the Miami Grand Prix has been moved forward 3 hours. It's because of thunderstorm warnings. It'll now get underway at 6 p.m. That's the latest.
12: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
13: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો કે પ્લીઝ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહી છે જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો तो अमारी मैत्रीपूर्ण टीम मदद करी शके छे। अमे धूम्रपानी तृष्णाओ घटाडवा अने छोड़वानो सरल बनाववा माटे पेज वेप्स अने गम सहित मफत धूम्रपान बंद करवा माटे सपोर्ट प्रदान करीए छीए। धूम्रपान छोड़वाथी तमारा स्वास्थ्य मां सुधारो थाय छे, तमारा परिवार नु रक्षण थाय छे अने खरेखर महत्वनी बाबतो माटे तमारा पैसा बचावे छे। अने अमारा समर्थन थी तमे एकला धूम्रपान छोड़वा करता सफलतापूर्वक छोड़वानी शक्यता 3 गणी वधारे छे। शुरुआत झड़पी अने सरल छे। आजीज ककलीस वेलनेस सर्विस .co.uk नी मुलाकात लो अथवा 01484-234-0095 पर कॉल करो। किर्कलीस काउंसिल वेलनेस सर्विस कायम माटे छोड़ी दो।
14: जागते रहना।
7: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
14: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
7: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
14: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
7: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
14: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून, टेलीफोन 01484-542-700।
4: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
15: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
16: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
15: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
16: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
15: Download the LEMFI mobile app today.
16: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.
17: Yes, I mean, welcome back after the 8 o'clock news and commercial break. Khush amdeed ji aanu. Behad shukriya aapki mohabbaton ka, aapki chaaton ka, aapke pyar aur khulus ka. Bahut sare log janab mera saath de rahe hain. Halanki chutti ka din hai. Main hamesha kehta hoon bahut sare log soye bhi hue hain, kyunki zindagi mein jab 5 din kaam hota hai to fir ek do din thoda aaram bhi karna zaruri hota hai. Ab sare meri tarah aur Shamshad Aslam ki tarah thode hain bhai, saatu din saatu raatein अपने बस चल पड़े जी, कहते हैं कि अपने काम काज के सिलसिले में करना पड़ता है जी कुछ लोगों को, और कुछ लोग सोए हुए हैं जनाब, तड़ेल करके जनाब उनके बैंकों में पैसे चले जाते हैं, उनके चेक घर आ जाते हैं, वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं, और जो हमारे जैसे मजदूर बंदे हैं उनको तो आगे पीछे हाथ पांव मारना पड़ता है तब जाके सारे सिलसिले चलते हैं। तो ये बस चलिए जी, दुनिया है, अल्लाह ताला हर आदमी को कोई ना कोई उसका सबब बनाया हुआ है, उसकी रोजी रोटी का सिलसिला चल रहा है, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं और सुबह के जनाब 8:00 जस्ट गोइंग आफ्टर 8:05। जी हाँ, अब हम दूसरे हिस्से में पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए सुनवाते हैं, चलाते हैं, और यकीनन आप सबको अच्छा लगेगा। और सुनीति चौहान की आवाज़ है और बड़ा डीप है ये गीत, न जाने इसमें क्या मैसेज है, चलिए मिलके सुनते हैं।

मंजिल करीब सी पर माड़े नसीब सी। सुनीति चौहान की खूबसूरत आवाज़ और बहुत सारे लोगों का पसंदीदा ये गीत था। फिल्म का नाम दिल। उदित नारायण का साथ दे रही हैं अनुराधा पौडवाल।

जी हाँ, एक और बहुत खूबसूरत गीत, क्लासिकल गीत, फिल्म का नाम पाकीज़ा। मीना कुमारी की एक यादगार फिल्म, कुमाल हमरोई की प्रोडक्शन में, जो कि मीना कुमारी के पति थे, हस्बैंड। बड़ी मुश्किल, बड़ी तगो दौड़ से ये फिल्म पाया तकमील तक पहुंची थी, क्योंकि मीना कुमारी उन दिनों बीमार पड़ गई थी और बहुत सारा काम फिर उनकी तस्वीरों से लिया गया था उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। क्या आर्टिस्ट, क्या अदाकारी और क्या फन, जो लोग अपने फन के साथ पूरा पूरा इंसाफ करते थे।

समय ने क्रम एक और बात आपको बताता चला बहुत सारे लोगों के इल्म में शायद ये बात नहीं होगी और मेरे जैसे कुंतरे निकालने वाले बंदे बड़ी गौर से देखते हैं उन लोगों को जो खासकर ये जो आर्टिस्ट और फनकार और अदाकार होते हैं मीना कुमारी की एक हाथ की उंगली जो चीची उंगली के साथ एक उंगली होती है वो कटी हुई है लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है आप अगर गौर से देखें जहां मीना कुमारी रक्स करती हैं फिल्मों में तो वो हाथ हमेशा दुपट्टे के नीचे छुपा के रखती हैं ताकि किसी को पता ना चले लेकिन देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं

यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। बहुत ही खूबसूरत सदाबहार और क्लासिकल गीत अभी आप सुन रहे थे, सुरों की देवी लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़। फिल्म का नाम था पाकीज़ा। पर्दे पे आपने देखा होगा मीना कुमारी, और खूबसूरत गीत था, बड़ी खूबसूरती से इसको फिल्माया गया था, और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुमाल हमरोई थे, जो कि मीना कुमारी के पति थे, पति देवता यानी कि हस्बैंड थे। और बड़ी तगोदौड़ से ये फिल्म बनाई गई थी, बड़ा अरसे के बाद फिल्म को कंप्लीट किया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उन दिनों मीना कुमारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस कारण बहुत सारी डिले, शूटिंग डिले हो गई, बहुत सारे उसमें जो आर्टिस्ट थे वो मर खप गए थे, उनके जो मौसीकार थे गुलाम अली साहब, गुलाम मोहम्मद गालबन इस किस्म का उनको कोई नाम था, जिसको आदि मौसीकी उन्होंने तरतीब दी थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे बीच में, फिर कोई दूसरा मौसीकार आया। बड़ी कठिन कहानी थी जिसके कारण कुमाल अमरोही को बड़ा मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और फिल्म को पाया तकमील तक लेके गए। बहुत शुक्रिया नादिया जी, हमारी साथी प्रेजेंटर। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इज़ वेल। आप भी हमारे संग संग हैं, हमारे साथ साथ हैं। रात को प्रोग्राम नादिया जी ने किया, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, मीठी मीठी बातें, खूबसूरत बातें धीमी धीमी आवाज़ से, और बहुत अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह करती हैं। कल रात को इन्होंने प्रोग्राम किया 5 से लेकर 7 बजे तक, और गीत भी बड़े प्यारे प्ले करती हैं।

0: फिल्म का नाम गुमनाम, उदित नारायण, मोहब्बत से ज्यादा,
1: मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुम।
0: गुड मॉर्निंग सिमरजीत।

जी सामने बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बेहद शुक्रिया अब्दुल कयूम जमाती साहब, आपकी डेरों दुआओं का भी बेहद शुक्रिया, और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है उसके लिए भी हमारा शुक्रिया कबूल कीजिए। और सिमरनजीत जी आपका भी बेहद शुक्रिया, नादिया जी आपका भी बेहद शुक्रिया। सिमरनजीत जी आपको ये गीत अच्छा लगा, आपकी नज़र किए देते हैं, आपने कहा है जी कोई और अच्छा सा गीत मेरी नज़र कर दें। ये अगला गीत सिमरनजीत जी आपके लिए होगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। और अब्दुल कयूम जमाती साहब ये गीत आपके लिए भी होगा, तो चलिए मिलके सुनते हैं। और फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी अपने दौर की, और बड़े गीत इसके मीठे थे। और अनीस दाऊद भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द वे लेस्टर से आप तमाम सुनने वालों को और खसूसी तौर पे शमशाद असलम साहब आपको और शकील भाई आपको सलाम कह रहे हैं। अनीस दाऊद भाई

जी हाँ, बहुत जी हाँ समीन, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, हम तुम्हारे हैं सनम। और अब चलते हैं जी अगले गीत की जानब, और देखते हैं जी ये मेरा गीत किधर चला गया है। हाँ, चलिए जी, गीत मेरे ख्याल में आ गया है, आ गया है, आ गया है। चलिए जी, आना चाहिए इसको अब। जी हाँ, तो अब आपको लेके चलेंगे एक और खूबसूरत गीत की जन्म। फिल्म का नाम है सुहाग, 1979 की फिल्म थी, और प्रदीप आपने देखा होगा द लेजेंड, अमिताभ बच्चन का साथ दिया था राखी रेखा रेखा ने। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त रक्स था इस गीत में।

जी हाँ सामीन, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सुहाग, 1979 की फिल्म थी और पर्दे पे आपने देखा होगा द लेजेंड अमिताभ बच्चन का साथ दिया था। बहुत सारे सितारे थे इसमें, ऋषि कपूर और रेखा और परवीन बाबी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और इसके गीत भी बड़े ही प्यारे थे। ड्यूसबरी से साम, आप भी हमारे संग संग हैं, बेहद शुक्रिया आपका और आपकी ढेरों दुआओं का भी बेहद शुक्रिया।

जी हाँ सामान, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। और अगली गीत की रिक्वेस्ट की है जनाब, किसने किसने, जी हाँ हमारी साथी प्रेजेंटर रिफत साहबा, आप भी हमारे साथ साथ हैं। तमाम सुनने वालों को सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आपने गीत की रिक्वेस्ट की है तो चलिए, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आपकी पसंद आपकी नज़र। और पेशकश आपके अपने रेडियो संगम की, और पेशकार आपका अपना अहमद शदाई।

हाय हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं। डाकुओं की कहानी है और गाने में वो इंट्स दे रही है कि कहां खड़ा है वो डाकू, कौन से लिबास में, कौन सी पगड़ी बांधी हुई है, कौन से कलर की पगड़ी है।

यहाँ पीपल के पीछे विनोद खन्ना खड़े होते हैं और साइड में धर्मेंद्रा खड़ा होता है। ये डाकुओं की कहानी थी, मैंने मुफ्त में आपको आधी फिल्म दिखा दी बगैर टिकट के बगैर पैसों के। फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश।

एक और क्लासिकल गीत मिसे गफार साहबा आपके लिए, 1973 की फिल्म अभिमान, पर्दे पे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का साथ दिया था उनकी अपनी पत्नी, अपनी बीवी और अपनी देवी, क्या नाम था उसका, जिया बहादुरी।

lot of beautiful songs. सुरों की देवी लता मंगेशकर यही गीत हमें ले चलेगा ब्रेक की जानब और ब्रेक हमें ले चलेगी न्यूज़ ब्रेक की जानब हमारे साथ रहिएगा

0: क्लासिकल गीत चौधरी मिजराब साहब आपका भी बेहद शुक्रिया आपसे बात नहीं हो सकी प्रोग्राम में आपको शामिल कर लेते हैं
1: An accident driving your taxi. Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
4: हां जी याद है
3: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
4: हां जी चाहिए
3: चांदी चाहिए
4: हां जी चाहिए
3: कहां से लोगे
4: चाचा ज्वेलर्स
3: फिर से बोलो
4: चाचा ज्वेलर्स
3: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
5: चाचा ज्वेलर्स केड़ी ऑफर लाईयां वहां चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
7: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
8: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
9: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
10: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
8: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
8: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
11: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
12: अभी कॉल कीजिए 01484549947
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
13: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
14: आर यू पीपिंग टॉम
13: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
15: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
13: Case closed.
1: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker, and on our

0: 107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना रेडियो संगम
1: सामेन वेलकम बैक आफ्टर द 9 o'clock न्यूज़ एंड कमर्शियल ब्रेक अब हम प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के वक्त के मुताबिक 9:08:05 हुआ चाहते हैं मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह सुबह के 10 बजे तक रहेगा बेहद शुक्रिया अज़राबाद जी हैलिफैक्स से आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा आपकी डेरों दुआओं का भी बेहद शुक्रिया और आप तमाम सुनने वालों को सलाम भी कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम और अब चलते हैं चंद गज़लें आपके लिए पेश करेंगे अगर जब कोई आएगा तो हम आपको ऑन द एयर लेके चलेंगे आपसे सुनेंगे और कुछ अपने सुनाएंगे तो चलिए मिलके सुनते हैं इस खूबसूरत गजल को द लेजेंड गुलाम अली की खूबसूरत आवाज़

0: जी समीन, माफ कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत गजल चल रही है, लेकिन इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से अमीदा नाज साहबा, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीदा सी।
1: वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
1: आप? हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू?
0: बस चल रहा है जी, धक्का दे रहे हैं
1: जी। जी हाँ, चलती का नाम गाड़ी,
0: चलती का नाम गाड़ी, बिल्कुल
1: दैट्स व्हाट वी आर नाउ।
0: सही बात
1: जी। आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही मशहूर पोएट की गजल
0: जी।
1: वो है, he has written such beautiful gazelles and I love his gazelles. उनका नाम है बेजाद लखनवी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत
1: जी हाँ
0: लिखते हैं।
1: क्या खूबसूरत गजल उन्होंने लिखा है। एंड अगेन आई सी द डेट, उनकी पैदाइश 1901 की थी
0: जी।
1: सो अगेन अर्ली 19th सेंचुरी एंड ही डाइड इन 1974, सो अर्ली 19th सेंचुरी की पोएट
0: जी।
1: I love this one of his. I'll read you a few lines of this one. Ae jazbae dil gar main chahun har cheez muqabil aa jaye. Manzil ke liye do gaam chaloon. Manzil ke liye do gaam chaloon. Aur samne samne manzil aa jaye. Ae jazbae dil gar main chahun. घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। इस वक्त मुझे चौंका देना, इस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंगे रंग पे महफिल आ जाए। उस वक्त पे मुझे चौंका देना, जब रंग रंग पे महफिल आ जाए। ऐ रहबरे कामिल चल देखो, तैयार तो हूँ पर याद रहे। इस वक्त मुझे भटका देना, उस वक्त मुझे भटका देना, जब सामने मंजिल आ जाए। उस वक्त मुझे भटका देना, जब सामने मंजिल आ जाए। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। ऐ जज्बा दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। शुक्रिया भाई साहब,
0: जबरदस्त। जी, आपकी गजल के साथ मैं कोशिश करता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, बड़ा पुराना गीत
1: अच्छा?
0: है, और फिल्म का नाम वक्त है, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलके सुनते हैं।
1: I think I know the song, but I'm looking forward to it. Thank you.
0: बहुत
1: शुक्रिया। Thank you. Love it.
0: और ये थी ऑल द वे इन लंदन से अमीदा नाज साहबा, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज, और क्या क्या कलेक्शन इन्होंने अपने पास रखी हुई है जनाब, और बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये शौक़ की बात होती है, हर आदमी के पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही हर आदमी ऐसा शौक़ रखता है। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये रिक्वेस्ट है हमारे भाई किंग साहब की एकमंड वाइक से। तो चलिए इस गज़ल के साथ, आपकी गज़ल के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, यकीनन आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों का फेवरेट गीत है, मिलकर सुनते हैं। पर्दे पे आपने देखा होगा सुनील दत्त, राजकुमार, साधना उन दिनों कॉलेज की लड़कियां माथे पे बाल डाला करती थी, क्योंकि उनका माथा काफ़ी चौड़ा है जनाब, और वो माथे पे हमेशा, आपने अगर देखा होगा उनको फिल्मों में, तो माथे के ऊपर बाल अपने हमेशा डाले रखती थी, ताकि वो क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार, अदाकारी की अदाकारी, और माथा भी छुप जाता था और बाल बड़े खूबसूरत लगते थे। गौर से अगर आप देखेंगे तो आप यकीनन मेरी बात के साथ इत्तफाक करेंगे। साधना जी उन दिनों बड़ी पॉपुलर थी उनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ राजकुमार के साथ सुनील दत्त के साथ तो चलिए मिलके सुनते हैं इस गीत को

0: गीत बहुत ही खूबसूरत है लेकिन मैं इसको रिवाइंड करके प्ले करूंगा लेकिन इस वक्त लाइन पर कोई मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम
1: जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जनाब ठीक ठाक हैं
0: क्या हाल है सरकार आज आप वाया रोमानिया से आए हैं बड़ी बात है जी आजकल आप घूम घाम के आते हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं
1: बिल्कुल ऐसी है जी वो कभी कभी घूमना भी चाहिए ना ये तो अच्छी बात है ना कि आप कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते रहते हैं
0: जी इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे साथी प्रेजेंटर जो कि संगम स्टूडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम करते हैं आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और आप भी इनकी आवाज़ से यकीनन बहुत सारे लोग अब तो इनकी आवाज़ से इनको पहचान लेते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज अदा किए देता हूँ शमशाद असलम साहब आल द वे इन पाकिस्तान गुजरात से हमारे साथ मौजूद
1: बहुत शुक्रिया जी बेहद शुक्रिया यार होते हैं चाहते हैं और मैं भी जल्दी से गजल पेश करता हूं अपने सुनने वालों का नाम और इनकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा फीडबैक देते हैं सभी प्रेजेंटर के शो में आके तो थैंक यू वेरी मच और गजल है जनाब वसी शाह की आज सभी समाजों की नजर के मैं हूं तेरा ख्याल है और चांद रात है
0: ओए होए होए
1: मैं हूँ तेरा ख्याल है और चांद रात है दिल कर्ज पे नडाल है और चांद रात है
0: बहुत खूब
1: और आंखों में चुभ गई तेरी यादों की करचियां आंखों में चुभ गई तेरी यादों की करचियां कांधों पे जम खाल है
0: बहुत खूब
1: और चांद रात है और दिल तोड़ के खामोश नजारों को क्या मिला दिल तोड़ के खामोश नजारों को क्या मिला शबनम का ये सवाल है और चांद रात है
0: बहुत खूब
1: फिर तितलियां सी उड़ने लगी तश्ते हाव में फिर तितलियां सी उड़ने लगी तश्ते हाव में फिर हाइशे विशाल है और चांद रात है
0: क्या बात
1: हर एक कली ने ओढ़ दिया मातमी लिबास हर एक कली ने ओढ़ दिया मातमी लिबास हर फूल पर मलाल है और चांद रात है मेरी तो पोर पोर में खुशबू सी बस गई मेरी तो पोर पोर में खुशबू सी बस गई इस पर तेरा ख्याल है और चांद रात है चलका सा पड़ रहा है वसी बख्शतों का रंग चलका सा पड़ रहा है वसी बख्शतों का रंग हर चीज पे जवाल है और चांद रात है मैं हूँ तेरा ख्याल है और चांद रात है दिल दर्द से निडाल है और चांद रात है थैंक यू जी
0: ओए होए होए क्या बात जबरदस्त जी जबरदस्त अमीदा जी और बहुत सारे लोग माशाल्लाह आपको दाद दे रहे हैं ब्यूटीफुल गजल वसी शाह
1: थैंक यू वेरी मच
0: अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू
1: सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज ये थे जनाब ऑल द वे इन पाकिस्तान गुजरात से हमारे साथी प्रेजेंटर हैं जनाब आप इनका प्रोग्राम भी चार पांच प्रोग्राम इनके होते हैं और आज भी इनका प्रोग्राम होगा कितने बजे जी हाँ अब गालबन शीट मेरे से थोड़ी सी दूर है बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आज शायद नहीं है इनका प्रोग्राम तो इनके वैसे काफ़ी प्रोग्राम जी हाँ 12 से 3 बजे तक बिल्कुल जी आज इनका प्रोग्राम है 12 से 3 बजे तक ज़रूर सुनिएगा और बहुत सारे लोग इनका प्रोग्राम सुनते हैं सराते हैं और इनको फीडबैक भी देते हैं आपको भी पता है हमें भी पता है जी हाँ आज इनका 12 से 3 बजे तक प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा ज़रूर सुनिएगा और चार पाँच प्रोग्राम इनके होते हैं और आप सुनते हैं जनाब और फीडबैक उनको भी देते हैं हमें भी देते हैं जिसे पता चलता रहता है कि वो आप प्रोग्राम इंजॉय करते हैं तो चलिए आपको लेके चलते हैं दोबारा उसी गीत की जानब जो कि चल रहा था

0: हाँ, बहुत ही खूबसूरत थे क्लासिकल गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था वक्त और महेंद्र कपूर का साथ दिया था लता मंगेशकर ने। जी हाँ शमशाद भाई, आज आपका प्रोग्राम होगा 12 से, जी हाँ शमशाद भाई का प्रोग्राम होगा 12 से 3 बजे तक, और सईद भाई का प्रोग्राम रात को आगे चला गया है 7 से 10 बजे तक रात को होगा। ज़रूर सुनिएगा शमशाद भाई का प्रोग्राम 12 से 3 बजे तक यूके टाइम के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक खूबसूरत गज़ल की जानब। यह गीत बड़ा ही प्यारा था, जैसा कि मैंने कहा फिल्म का नाम था वक्त। पर्दे पे आपने देखा होगा राजकुमार और सुनील दत्त और साधना, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। लाला किरदारी नाथ बर्राज सानी, इनके वालिद मोहतरम थे फिल्म में, और इनका बहुत बड़ा कारोबार था, कपड़े का बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था। तो कहते हैं तकब्बर नहीं करना चाहिए, लाला किरदारी नाथ एंड सन्स इन्होंने बड़े शोशे छोड़े, लेकिन एक ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ाकर चला गया। इसलिए वक्त की कदर करनी चाहिए और कभी भी तकब्बर नहीं करना चाहिए, हमेशा वक्त के साथ जो इंसान चलता है वही कामयाब रहता है।
1: निकलो ना बेनकाब,
0: जमाना खराब है, हम क्या होंगे खराब,

0: क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। जमाना तो वाकई बरसों से खराब है, लोग वैसे ही लोगों को बदनाम करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी दो शख्सियत मौजूद हैं जी, संगम जो के दिलों को मिलाता है, हमारा मोटो यही है। और इस वक्त जनाब दो दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दो देशों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर साबर भाई हैं, पाकिस्तान से, और इंडिया से हैं जसी साहबा। मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ, करूँगा कि इन दोनों को मिला कर आंधियर लेके चलूँ। इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट हार्ड, कोशिश करने से अक्सर इंसान कामयाब हो जाता है। तो चलिए जी, मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक कामयाबी होती है। तो हमारे साथ हैं जनाब पाकिस्तान अरनाला खुर्द से जनाब हमारे प्यारे भाई साबर भाई, और जसी साहबा ऑल द वे इंडिया से, खूबसूरत आवाज़। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, अलहम्दुलिल्लाह बरकातहू सर जी, क्या हाल है? ठीक हो?
0: क्या हाल है साबर भाई? और सत श्री अकाल, नमस्ते जसी साहबा।
2: सत श्री अकाल सर जी, मैं ठीक हूँ, अभी ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से।
0: आप आपका ख्याल आपके ख्याल से क्यों आप ये क्यों क्या आपके ख्याल से क्यों मैं ठीक नहीं लगता
2: सर? कल आप मिले नहीं मेरे को, मैंने फरमाइश भेजी थी इसलिए।
0: कल मैं आपको क्यों नहीं मिला हूँ? मिलने से तो लोग भगवान को ढूंढ लेते हैं, मिलने से तो खुदा मिल जाता है। मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ, मैं मुझे ढूंढने में कितनी देरी लगती है। आपने उधर से आवाज दी और मैं तुरंत आ गया।
2: आज आए हो ना सर, कल मैं 24 घंटे से ढूंढने में लगी थी।
0: 24 घंटे वो चिराग जलाया था?
2: जलाना भूल गई बस।
0: तो इसीलिए आपको पता है ना, जब तक आप चिराग नहीं जलाएंगी उस वक्त तक मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। चिराग जलाएंगी, उसको थोड़ा सा रगड़ेंगी तो शदाई फौरन नाजर हो जाएगा।
2: उधर से कोई अली बाबा ना ना आ जाए?
0: नहीं नहीं, अली बाबा आप चिराग जब रगड़ेंगे, आप चिराग जब चिराग को रगड़ेंगे तो नाम जिसका लेंगे वही आएगा ना। अली बाबा कहाँ से आके टपकेगा? आऊंगा तो मैं ही, मुझे बुलाएंगे तो मैं ही आऊंगा। चलिए जी, बहुत बहुत अच्छा लगेगा जी, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह आप की खूबसूरत आवाज सुनने के लिए, लोग बड़े बेताब हैं।
2: कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलती है, वही आपका स्लोगन हमने चुरा लिया।
0: अच्छी बात है जी। तो चलिए जी, अब किससे, अब साबर भाई की शुरुआत करेंगे, साबर भाई या आपकी शुरुआत?
1: जी सर, फीमेल से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार मोहब्बत भरा सलाम जी, जहाँ तक रेडियो संगम की आवाज आ रही है
0: जी।
1: तो सर जी, ये ना कोशिश की है हमने, पहले इसकी जो रिहर्सल नहीं की, बिल्कुल नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की, दोनों ने गाया नहीं एक साथ, लेकिन यहाँ संगम पे ही गाएंगे। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी रह जाए तो इसमें इसके लिए पहले से माजरत जी।
0: कोई बात नहीं है जी, आप दोनों की खूबसूरत आवाज जब मिलेगी तो फिर चार चांद लगाएगी इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, तमाम दोस्तों की फरमाइश पे जी। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त जो सुन रहे हैं, मेल फीमेल आर जी जितने भी हैं स्पॉन्सर, उनको ये अच्छा लगेगा
0: जी।
1: जी जस्टिस साहब जी, शुरू करें।

मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत ना से आए भी दिलों

0: जादू आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो
1: जो इसे जो इसका

0: जबरदस्त स्क्रीन मेरी भर गई है जनाब
1: स्क्रीन मैंने जितने भी गाने गाए हैं ना आज मेरा सबसे बेस्ट सुर लगा है मैं बहुत खुश हूँ
0: और माशाल्लाह अमीदा जी लंदन से मिसे गफार साहब हैं हमारी साथी प्रेजेंटर नसरीन अख्तर साहब स्क्रीन मेरी भर गई है और आप दोनों को अल्लाह ताला सलामत रखे नजरे बद से बचाए आपकी खूबसूरत आवाज़ों का जो संगम है मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी आवाज़ों का संगम इसी तरह होता रहे अपना अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह आप दानों को सलामत रखे और नजरे बद से बचाए
2: आमीन आमीन शुक्रिया सर कोशिश होती है कि रेडियो संगम पे जो है ना जितने भी दोस्त आते हैं उनका दिल बुलाया जा सके और जितने भी कोशिश की है वो पूरी भरपूर कोशिश की है ताकि जो जो रेडियो संगम का एक अलग से जो है ना मजा वो दुबाला हो
0: बेशक
2: कोशिश तो सर हमारी
0: बेशक इसमें कोई शक नहीं है साबर भाई ये आपकी बड़ी कावश है और बड़ी हिम्मत है कि एक बंदा इंडिया में बैठा हुआ है और एक पाकिस्तान में और इसको लिंक करना और फिर उसको एंड तक पहुंचाना पाया तकमील तक पहुंचाना इट्स नॉट इजी लेकिन आप दोनों ने बहुत बड़ी खूबसूरती से डुएट गाया और बहुत सारे लोग आपको माशाल्लाह दाद दे रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा
2: बहुत मेहरबानी सर शुक्रिया तमाम
0: थैंक्स अलॉट जैसी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया अल्लाह हाफिज और जी हाँ ये थे जनाब हमारे साथ साबर भाई ऑल द वे इन पाकिस्तान से और इंडिया से जसी साहबा और मैंने पूरी कोशिश की कि इसको दोनों को मिलाकर आप तक इन दोनों की आवाज़ें पहुंचाने की कोशिश की है कहां तक कामयाबी हुई है ये आप बता सकते हैं और बेहद शुक्रिया नसरीन साहबा आप भी दाद दे रही हैं साबर भाई और जसी साहबा को अमीदा जी हैं और बहुत सारे लोग माशाल्लाह अब्दुल कयूम जमाती साहब हैं सिमरजीत जी हैं नादिया जी हैं और शमशाद असलम साहब हैं और अल्लाह करे जी ये आवाज़ें खूबसूरत आवाज़ों का जादू रेडियो संगम पे ये दानों जगाते रहें

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन
2: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
3: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
4: Lanika!
5: Lanika! Arey, aaj to bahut khush lag rahe hain. Ye Lanika kaun hai?
4: Tum bhi har waqt shak karti rehti ho. Aaj main aur mere dost Lanika Restaurant Halifax khana खाने गए थे
5: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
4: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
5: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
4: कंजूस कहेंगे
3: उनका बुफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10s 11.99 एंड अंडर 4s फ्री
5: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
4: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
6: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
7: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947
6: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
10: चाय चाहिए तो फिर
11: गो चाय
10: कभी भी चाहिए तो फिर
11: गो चाय
10: दिन को चाहिए रात को चाहिए हर वक्त चाहिए तो फिर
11: गो चाय
12: नीड अ प्रॉपर चाय फिक्स फॉर व्हेन यू आर ऑन द गो स्किप द क्यू एंड हेड टू गो चाय सर्विंग द पीपल्स फेवरेट कड़क चाय क्रीमी कश्मीरी चाय कॉफी एंड मच मोर मेड फ्रेश एट द टच ऑफ अ बटन परफेक्ट टेस्ट परफेक्ट टेंपरेचर एंड हार्ड टू बीट ऑन प्राइस अवेलेबल 24/7 फाइंड गो चाय एट योर लोकल पेट्रोल स्टेशन फॉर एग्जैक्ट लोकेशंस विजिट gochai.co.uk Go chai, proper chai, anytime.

बेहद शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम बहन और भाइयों का, आपने भरपूर मेरा साथ दिया। दौरान प्रोग्राम अगर जाने या अनजाने में कोई गलती सरजद हो गई हो तो बड़ा या छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। अगर जिंदगी रही अल्लाह ने चाहा, सांसों ने मेरे साथ बेवफाई ना की, तो फिर किसी मोड़ पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, अगर हो सके तो इस नाचीज को अपनी नेक दुआओं में जरूर याद रखिए। तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह ने गिबान एंड बाय बाय।

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, संगा खैर द, और किदा साए, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? संडे की सुहानी मसहूर कुन सुबह, हल्की हल्की सी बारिश, छुट्टी का दिन, बल्कि इस बार तो लॉन्ग वीकेंड, और खूबसूरत सी यादें, खूबसूरत लम्हात, ऑलमोस्ट 11 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन आज का 3 मई 2026। मैं हूं आज ये तोकीर, आपका नया होस्ट एंड दोस्त। प्रोग्राम का नाम नई सुबह नई सोच, और सुन रहे हैं आप हमें रेडियो संगम 107.9 एंड 94.7 एफएम, और आप हमें सुन सकते हैं इसके अलावा भी डीएबी डैब ऑनलाइन ऐप के ऊपर। दुनिया भर में कुछ लोग हमें अमेरिका में सुनते हैं, कुछ इवन सिंगापुर में, कुछ स्वीडन में, फिनलैंड में, और बिलखसूस हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और जहाँ जहाँ उर्दू जबान और साउथ एशियन कल्चर को जाना और पहचाना जाता है वो लोग भी सुनते हैं। आप सबको आप अपने वक्त मुताबिक, कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग कहने का टाइम है, कुछ लोगों को हम गुड इवनिंग कह रहे होंगे, और कुछ लोगों को हम गुड आफ्टरनून भी कहते हैं। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आज का जो टॉपिक हमने रखा है बड़ा हल्का फुल्का सा, खूबसूरत सा। प्रोग्राम का नाम नई सुबह नई सोच, और टॉपिक उन्वान रखा हमने आज ददयाल वर्सेस ननियाल। दिल आपका कहाँ ज्यादा लगता है? आपने अपना बचपन, आपने अपने गोल्डन डेज कहाँ पे ज्यादा अच्छे गुजारे? कहाँ पे ज्यादा आपने ज्यादा समेटी? कहाँ आपने अपने आप को बनाया, तरबियत पाई? ददयाल के अंदर ज्यादा आपको तरबियत मिली या ननियाल के अंदर? ये सब चटपटी खूबसूरत सी यादें, बातें हम करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और आप बताइएगा हमें अपनी यादों के झरोखों में जाने के बाद कि आपके ननियाल में आपका टाइम कैसा गुजरा, और क्या आज भी आप अपने ननियाल के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। इसी तरह आप हमें ये भी बताइएगा कि ददयाल साइड के अंदर आपके ताया, चाचा, फुफोज, इनके साथ आपके मामलात कैसे रहे हैं, और किस तरह की यादें आपने समेटी हैं। ये सब बातें होंगी आज के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। साथ साथ सुनेंगे वहां पे गाने, आपकी मेलोडीज, आपकी बातें भी सुनेंगे। प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 07444202155। ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, जहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, और ददयाल और ननियाल के हवाले से आपकी जो यादें हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, कोई मसालेदार किस्म के, खूबसूरत से, और कुछ शायद जज्बाती से भी, सब सुने हम आपके, आपके दिल की बात सुनी जाएगी, और दिल की बात दिल तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि रेडियो संगम है दिलों को मिलाने वाला। नंबर मैं फिर से बता देता हूं आपको, हॉटलाइन पे कॉल करने के लिए 01484817705, और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर 07444202155। जी हाँ, अपने तो अपने ही होते हैं। क्या खूबसूरत गाना है सोनू निगम की आवाज में। वाह वाह वाह, जिन्होंने अभी अभी रेडियो स्टेशन को ट्यून किया है,
उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका आज तौकीर आपके साथ, और प्रोग्राम का नाम नई सुबह नई सोच, ननिहाल वर्सेस ददियाल। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और आपके साथ बातचीत होती रहेगी, चलती रहेगी। ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, पल पल दिल के पास। अब मुझे इंतजार रहेगा आपके पैगामात का, आपकी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातों का, कि आप किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंट रहे, ननिहाल या ददियाल। सुनते हैं ये गाना, ये गाना मैं डेडिकेट करता हूं अपने ददियाल साइड के फुफोस को। पोस्ट कंट्रोवर्शियल इस तरह जो मिथ है कि फुफोस जो हैं वो शायद कभी कभी आपको क्रिटिकली लेती हैं, या कंपटीशन की तरफ आपको ले जाया जाता है फुफो की तरफ से, या आपको जज किया जाता है ज्यादा ददियाल में। लेकिन यकीन करें, हमारी जो पुप्पो हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत, कभी कभी क्रिटिकल एनालिसिस भी, लेकिन हमारी जिंदगी को बनाने में हमारी पुप्पो का बहुत ज्यादा हिस्सा। क्या आपकी पुप्पोज, आपकी ताया ताई, उन्होंने आपकी जिंदगी बनाने में किरदार अदा किया? जरूर बताइएगा। सुनिए गाना, मिलते हैं इस गाने के बाद।

छुट्टी वाले दिन उन रब ने संवारिया ओ यार मेरा वस्ता रवे हंसता रवे इब्राहिम की आवाज में खूबसूरत सा गाना वेलकम बैक टू द प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 एंड 94.7 एफएम आप हमें सुन सकते हैं डीएबी डैब ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी दुनिया भर के अंदर और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 07444202155 हमें व्हाट्सएप का नंबर है ये यहाँ पे हम अपने पैगाम अपनी चटपटी सी खूबसूरत सी बातें हमें भेज सकते हैं और कोई खूबसूरत गाना खूबसूरत मेलोडी जो आप सुनना चाहें वो भी हमें बता सकते हैं हम आपको डेडिकेट करेंगे वो गाना और इस छुट्टी वाले दिन आपको आपके अपने प्यारों के साथ आपकी अपनी खूबसूरत यादों के साथ और आपके अपने खूबसूरत जज्बा के साथ जोड़ दिया जाएगा सुन रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह नई सोच संडे का दिन इतवार का दिन छुट्टी का दिन खूबसूरत याद क्या ही खूबसूरत माहौल है यार और टॉपिक जो हमने रखा हुआ है आज का जैसे कि मैंने पहले बताया ननियाल वर्सेस ददियाल

देखे ननियाल हो या ददियाल दोनों ही अपनी जगह अहम है। ननियाल हमें लाड देता है और ददियाल हमें पहचान। ननियाल में फ्रीडम होती है नहीं, और ददियाल में थोड़ा डिसिप्लिन, हर चीज परखी जाती है, तरबियत दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे प्यार की भी और थोड़ी सी फैमिली पॉलिटिक्स की भी। आपके घर में कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ददियाल वाली या

ओए शरीका नू अग लगदी वाह मठी मठी अग लगदी जी हाँ शरीका नू अग लगदी खूबसूरत गाने पर की आवाज और बात कर रहे हैं हम ददयाल वर्सेस ननयाल आपका टाइम कहाँ पे ज्यादा अच्छा गुजरा कहाँ पे आपकी तरबियत ज्यादा अच्छी हुई और कहाँ पे आपने मौज मस्तियां की बगैर किसी रूल और रेगुलेशंस के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं ददयाल साइड की जिसे शरीका भी कह रहा था कभी कभी ददयाल से रिलेटेड ये गाना अपने ददयाल को सामने रखते हुए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ददयाल साइड की जहां पर इंसान को इंसान बनाया जाता है डिसिप्लिन आइडेंटिटी गाइडेंस स्ट्रक्चर जी हाँ ददयाल वो जगह है जहां जिंदगी सिखाई जाती है ताया जान दादा जान घर के सतून की तरह होते हैं बल्कि ताया जान को कभी कभी तायाबू भी कहा जाता है दूसरे बाप का रोल और ताया घर का सतून भी समझा जाता है डिसिप्लिन के अंदर डिसीजन लेने के अंदर आपके ताया जान आपके दादा जान ऑब्वियसली इनको फॉलो किया जाता है तो घर का गुरु माना जाता है डिसीजन मेकर दादा जान कौन कहता है ददयाल ने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है ददयाल साइड की तरफ से उसको ज्यादा तरबियत स्ट्रॉन्ग किस्म की मिली है उसको वैल्यूज देने के अंदर खानदान का जो है प्राउड बनने के अंदर और अपने आप को तालीमी मैदान में अखलाकी मैदान में और तो और फनी

पर आपको याद तो होगा। ददियाल शहर पे एक ना कजन ऐसा जरूर होता है जिसके साथ आपको मिलाया जाता है। वो देखा है आपके ताया का जो बड़ा बेटा है उसके कितने नंबर आए हैं, उसके कितने कितना ज्यादा तरक्की में है और आप पीछे रह गए हैं। कभी कभी आपको कंपेयर भी किया जाता है जो कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये कल्चरली ये हिस्सा रहा है हमारे कल्चर का। दुनिया आगे बढ़ चुकी है और सूरत हाल काफी ज्यादा पसंद से बदल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया किसी कोने में अभी भी ऐसा यकीन होता होगा।

जी हाँ, और ददयाल साइड में आपको टफ टाइम मिला या आपको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिला? दादा जान के साथ आपकी क्या यादें रही? और चाचा जान जो हीरो लगते हैं, जो आपके फेवरेट होते हैं, आपको चीज़ें ला के देने में, आपको गिफ्ट ला के देने में, आपकी तारीफ करने में और आपको घर का हीरो बनाने में इनका किरदार काफ़ी ज़्यादा होता है, क्या आपके ताया जान, आपके चाचा जान, क्या आपकी पुपोज, इन्होंने दिया आपको बहुत ज़्यादा प्यार बचपन में? क्या पता उनमें से कोई आज जिंदा भी ना हो, किसी का तो शायद उसे दादा जान का मुंह भी ना देखा हो और किसी ने जो है वो

रिश्ते बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अहम खास तौर पे अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं जनाब या आप रहे हैं तो कमाल किस्म का टाइम आपने गुजारा होगा लाजमी हम सुनेंगे आपकी चिकनी चुपड़ी बातें आपकी खूबसूरत यादों के साथ आपके ददयाल में आपका टाइम कैसा रहा हल्की हल्की सी फुहार हल्का हल्का सा बारिश का समा और उसके साथ ये उदित नारायण की आवाज में गीला गीला सा बारिशी सा मौसम और सुहाना वक्त उसके साथ ये गाना और सुनिए और एंजॉय कीजिए अपनी संडे मॉर्निंग मुझे इंतजार रहेगा आपके खूबसूरत कमेंट्स का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन वंस अगेन आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07444202155 मिलते हैं सॉन्ग के बाद फिर बात करेंगे तदयाल साइट्स के ऊपर आपके दाद के वो रिश्तेदार जो आपके अब्बा जान की साइड से होते हैं हमारे साथ रहिएगा आज जो तकीर विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग एंड देयर विल बी आल्सो अ वन फीमेल जिंगल फॉर रेडियो संगम मिलते हैं इसको

0: जी हाँ, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और जिन्होंने अभी भी रेडियो स्टेशन को ट्यून किया है उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम नई सुबह नई सोच, और आज टॉपिक जो हमने रखा हुआ बड़ा हल्का फुल्का सा तो सबके साथ रिलेट करता है, वो है ननियाल साइड या ददियाल साइड, दोनों में से आपका अच्छा ज़्यादा बेस्ट टाइम किस तरफ से गुजरा, किस तरफ गुजरा एक्चुअली, और ननियाल के हवाले से आपके क्या अच्छी बातें करना चाहेंगे अपने नाना नानी को लेके, अपने खाला जान को लेके, अपने मामू जान को लेके, और ददियाल साइड से आपको किस तरह की यादें, आपको किस तरह सा प्यार मिला, और आपकी उस बारे में क्या राय है अपने ताया जान चाचा जान के हवाले से, और अपने दादा दादी के हवाले से, और अपने फर्स्ट कजन्स के हवाले से। प्रोग्राम में बड़े अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हमारे मामू जान तो हमारी जान है जी, मामू। किसी ने ये भी कमेंट किया है प्रोग्राम के अंदर कि मामू मतलब मामा, दो माओं को मिलाया जाए तो एक मामू बनता है। हमारे मामू जान सबसे प्यारे, जी हाँ मामू वाकई प्यारे होते हैं, और दुनिया के सब मामों को सलाम। इसके अलावा हमें प्रोग्राम में एक बंदे ने कमेंट किया है कि उनके वाले साहब तो बचपन में ही नहीं रहे रतन को गली के रहमत फरमाए, तो उनके दादा जान ने और उनके चाचू ने उनकी ज़्यादा तबीयत की अलोंग विद हिज मदर, और
1: दुआएं दी हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद, पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है, और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है, अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 Kirklees Council Wellness Service, हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ो।
2: जागते रहना, जागते रहना।
3: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
2: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का, और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
3: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप।
2: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना, और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
2: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून, टेलीफोन 01484542700।
4: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

जी हाँ, वेलकम बैक। कभी कभी प्रोग्राम में जिंगल्स आ जाते हैं जो कि सुनना जरूरी है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम अगेन, वंस अगेन। खामोशियां गुनगुनाने लगी, खामोशियां तोड़ते हुए हमें मैसेज किया है हमारी बहुत ही खूबसूरत लिस्नर हमीदा अपी, लंदन से हैं और उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होने के बाद खुश आमदीद और सुबह बखैर कहा है सबको। और उन्होंने टॉपिक के हवाले से कहा है जी कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी ट्रू, मोर लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ननियाल और द दयाल, मोर डिसिप्लिन। जी हाँ, वो ये कह रही हैं कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी ननियाल साइड पर ज़्यादा लव, अफेक्शन और आज़ादी और फ्रीडम मिलती है और द दयाल साइड पर डिसिप्लिन थोड़ा सा आपकी तरबियत को ज्यादा परखा जाता है, किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमीदा जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके अलावा मैसेज किया है हमारे एक लिसनर ने और उन्होंने आदाब और सुबह बखैर कहा है सबको और वो कह रहे हैं, बल्कि कह रही हैं, कुड यू प्लीज प्ले द सॉन्ग हमदर्द फ्रॉम फिल्म हमदर्द। जी हाँ बिल्कुल, आई एम सर्चिंग ऑलरेडी दिस सॉन्ग। अगर हमारे लाइब्रेरी में हमें मिलता है तो हम ये गाना जरूर चलाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।

जी हाँ, खुश आमदीद कहते हैं आपको अगेन। वतन से रिलेटेड प्यार को, मोहब्बत को और वतन की मिट्टी के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको बूस्ट देने के लिए ये गाना लाइब्रेरी में शामिल किया गया, म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर। और तमाम मोहिब्बे वतन लोगों को, तमाम पैट्रियट्स को ये गाना डेडिकेट किया जा रहा है। सब पाकिस्तान वालों को, हिंदुस्तान वालों को, इंडिया वालों को, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहां जहां हमारी आवाज सुनी जा रही है, सबको, उन लोगों के, उन दोस्तों के, उन लिसनर्स के लिए ये खूबसूरत गाना।

जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम दोस्त, अब एक ही इंसानियत के रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं और इन रिश्तों के साथ ही आपस में कनेक्टेड रहना हमारी खूबसूरती है, इंसानियत की जीत है और दिल की और जान की जीत है। ये दुनिया हमारा मुल्क है जी, और यहाँ पे बसने वाले डिफरेंट मज़ाहिब के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट ज़ुबानों के सारे इंसान कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। हम सब एक दूसरे के कज़न्स हैं, चाहे हमारे मज़ाहिब डिफरेंट हों, हमारी रंग रूप डिफरेंट हों, हमारी ज़ुबानें डिफरेंट हों, लेकिन इंसानियत और जज्बात सबकी एक ही है। हम अगर अपना आज भी डीएनए चेक करवाएं, साइंस ये बताती है, तो हम जो है शायद किसी अमेरिकन साइड से किसी रूट से हमारा कनेक्शन बनता है, या हमारा रूट कभी हो सकता है किसी अरब साइड से हो सकता है किसी इंडियन बैकग्राउंड के साथ हमारा कनेक्शन हो, हम ये नहीं जानते। लेकिन साइंस ने आज प्रूव किया है कि डीएनए चेक करवाया जाता है, जहाँ पर आपकी 7 पुश्तों तक पीछे आपकी जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई है, आपकी आप कहाँ से एक्चुअली बिलोंग करते हैं वो बता दिया जाता है। लोगों ने अब ये इस बात है कि हम सारे आपस में कनेक्टेड हैं, हम सारे आपस में तायाजाद चाचाजाद ननियाल साइड से ददियाल साइड से हम आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे मज़हब डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी जुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इस बात तो एक है ना, हम इंसान तो हैं, हमारा खून का रंग तो एक ही है। और प्रोग्राम का जो टॉपिक रखा हुआ था दयाल और ननियाल के हवाले से, कि किस तरफ से हमें किस तरह का

शामिल हमें एक कमेंट टॉपिक के वाले से दिया गया, हमें तो किसी का प्यार नहीं मिला, ना ही तो दयाल ना ही ननियाल का हुजूर। थोड़ा सा जज्बाती सा, थोड़ा सा सैड सा कमेंट है जिसको पढ़ते हुए मुझे थोड़ा सा सैडनेस ही हो रही है, लेकिन जी हाँ ये रियलिटी है और हम इस रियलिटी को मानते हैं। यकीनन कुछ ऐसे दोस्त भी हमारे, कुछ ऐसे लिसनर्स भी होंगे, हमारे कुछ ऐसे साथी भी होंगे जिन्होंने शायद ननियाल और दयाल में टाइम ना गुजारा हो, उनको शायद मौका ना मिला हो, तो कोई बात नहीं जी, इसमें भी आपकी क्या मामलत रहे हैं, आपकी कैसे बचपन रहा। हर किसी का बचपन जो है वो खूबसूरत नहीं होता, किसी का बचपन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पर ऐसे लोग मुझे यकीन है आगे जाके बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिर जब अपने उनकी फैमिली बनती है तो फिर वो अपने बच्चों को, अपने कुंबे को देते हैं अच्छा ननियाल और दयाल। तो हम ये ख्वाहिश करते हैं, हम ये आरजू करते हैं, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हम अगर अच्छा ननियाल और दयाल नहीं देख पाए तो उम्मीद है कि हमारे आने वाले या हमारे जो मौजूदा जो कम जनरेशन है आपके फैमिली के, उनको हम अच्छा जो है ननियाल साइड का और दयाल साइड का प्यार दे पाएंगे किसी हद तक। इसी उम्मीद के साथ श्रेया घोषाल की आवाज में खूबसूरत सा गाना बरसो ए रेखा रेखा, इसको सुनिएगा और इस गाने के बाद एब्सोल्यूट टाइम है, खबरों का वक्त होगा और उसके बाद जनाब हम फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा और प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी प्रोग्राम के अंदर शामिल होते रहेंगे। प्रोग्राम के अंदर अभी एक घंटा बाकी है और मेरा और आपके साथ रहेगा अब से लेके 12 बजे तक। हमारे साथ रहिएगा।

0: concerns they're fueling a rise in violence on Jewish communities. Two Jewish men were stabbed in North London on Wednesday. Organisers of the events deny that there's a connection. Mr. Polansky agrees.
1: There are people who are unsafe, Jewish people, and that's clearly true. There are also people who feel like the marches are hate marches. I'm saying, as a Jewish person who marches with many Jewish people against the occupation in Palestine, when people say that makes them feel unsafe, that's a distortion of what the march is.
0: Two women have died and three others are in a critical condition after trying to cross the English Channel from France. Authorities believe 82 people were on board a small boat when it got into trouble. Extra police powers remain in force in Essex after reports of a large-scale fight in Southend on Friday. Around 30 young people were involved. Sir Keir Starmer's urged his party not to repeat the Conservatives' mistake of descending into political infighting. The Prime Minister said Labour must be more united to make life better for working people. And 2 million people have packed out Copacabana Beach in Rio to see Shakira in concert. The singer told crowds her success in Brazil helped strengthen her career. That's the latest.
2: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
3: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ
4: ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ
3: ਓ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਡਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
4: ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
3: ਖਾਦਮ ਸੁਪਰ ਸੇ ਬਰਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਸੋਬਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਦਲਾਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ Chicken, lamb, beef, free-range chicken, organic chicken, hadiyala gosht, har kisam da boneless, gurde, kaleji, batere, taza machli, desi murgi, balati kukad, siri paaye, bas banda liaye, pakaye te khaye, mehmana nu bulaye te sawab kamaye.
4: ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ
3: ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
4: ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ
3: ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮੌਲਾ
5: ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਜਾਈਏ ਹਾਜੀ ਸਵਤ ਮੀਟ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਖਾਦਿਮ ਸੁਪਰ ਸੇ 1 ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਬਰਕਵੀ ਹਰਸਫੀਲਡ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 9 ਟੂ 7 ਐਂਡ ਸੰਡੇ 10 ਟੂ 6 ਐਚਐਮਸੀ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਹਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 01484456257 ਦੈਟਸ 01484456257
6: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
7: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
8: Thinking about quitting smoking? The Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way. If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484 234 095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
9: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पैकेजेस आर अवेलेबल Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
10: जागते रहना, जागते रहना.
11: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
10: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
11: स्टॉप. अरे वाह, पराठा स्टॉप.
10: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
11: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
10: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हरिसफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484-542-700.
12: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
13: Are you peeping, Tom?
12: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
14: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
13: Come up and see me sometime.
12: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

इश्क पर जोर नहीं, क्योंकि जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। जी हाँ, इश्क, मोहब्बत, प्यार, रिश्ते, नाते, और ये आपको इस तरह ही कनेक्ट करते हैं जिस तरह से आपके अंदर जुड़ी हुई वेन्स आपके डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं। इस तरह खून आपकी रगों में दौड़ता है, सर से लेके पांव तक डिफरेंट वेन्स, खून की नालियां जो आपके साथ कनेक्टेड हैं नीचे से लेके ऊपर तक। इसी तरह ये हमारे ननिहाल और ददियाल साइड के जो रिश्ते होते हैं, ये हमें कनेक्ट रखते हैं, हमें पूरा एक मजबूत इंसान बनाते हैं। प्रोग्राम के हवाले से दोबारा से खुशामदीद कहा जाता है लोगों को जिन्होंने अभी अभी रेडियो स्टेशन को ट्यून किया है, उनको वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, संडे की सुबह। और आप सब लोग जो है शायद सो के नाश्ता कर रहे होंगे, लेट हो जाता है संडे के टाइम पे, कुछ लोग ड्राइव कर रहे होंगे अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना होंगे, कुछ लोग हमें सुन रहे होंगे खाना पकाते हुए किचन के अंदर, और कुछ लोग सुन रहे होंगे शायद अपनी संडे के काम पे जाते हुए। आप सब लिसनर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका अजय तौकीर आपके साथ, और आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 and 94.7 FM। अब हमें सुन सकते हैं DAB ऑनलाइन ऐप, डिजिटल ऐप के ऊपर भी। आप जहां से भी हैं दुनिया, किसी भी पार्ट से भी हैं, तो आप हमें सुन सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू रेडियो संगम। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 07444202155, और हॉटलाइन पर कॉल करने के लिए 01484817705। प्रोग्राम का टॉपिक जो चल रहा है, ननिहाल वर्सेस ददियाल, प्यार ज्यादा कहां से मिला। हम आपकी मेमोरीज को, आपकी यादों को और आपके जज्बात को जो है वो सुन रहे हैं। एक खूबसूरत सा सवाल हमारे बड़े खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक शमशीर असलम भाई साहब ने कॉल की प्रोग्राम के अंदर, और बड़ी अच्छी उनके साथ बात हुई कुछ मिनट के लिए, और उनके साथ बात की गई आपको प्यार कहां से मिला। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जनाब वाकई ही, क्योंकि घर में बड़े होने की वजह से दोनों साइड से उनको प्यार ज्यादा, काफी ज्यादा मिला, उनको सराहा गया, परखा गया, उनकी अच्छी तरबियत की गई, और बड़ा ही खूबसूरत मेमोरीज उनकी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं दोनों रिश्तों के प्यार को थोड़ा सा तोलूं तो मैं कहूँगा कि ननिहाल साइड से, नानी जान से सबसे ज्यादा प्यार उनको मिला। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा समझा जाता है कि नानियां ज्यादा प्यार करती हैं, दादियां भी तो प्यार करती हैं जनाब, वो भी तो हर वक्त आपके साथ 24 घंटे आपके साथ होती हैं, उसी घर में होती हैं, लेकिन नानियों के साथ आप ज्यादा क्यों कनेक्टेड होते हैं। तो जब उसको थोड़ा सा रूट कोस चेक की गई, रूट उसकी फाइंड की गई, तो जनाब वाकई क्यों के उसकी वजह ये है, क्योंकि बच्चा नेचुरली अपनी माँ जी के साथ, अपनी वालदा के साथ कनेक्टेड होता है। वो जब भी कोई गम होता है, प्रॉब्लम आती है, या कोई मुश्किल वक्त आता है, तो माँ की गोद को ढूंढता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रॉब्लम आती है, तो माँ के पास आ जाता है। और माँ डेफिनेटली ऑब्वियसली कनेक्ट होती है अपने पेरेंट्स के साथ। हर इंसान अपनी वालदा के साथ, अपनी माँ के साथ कनेक्टेड नेचुरली ज़्यादा होता है। जब आप अपनी वालदा के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और बचपन में ज़्यादा टाइम आप अपनी वालदा के साथ गुजारते हैं, और वालदा कनेक्टेड होती हैं अपनी वालदा के साथ, और फिर वो वालदा अपनी वालदा के साथ बात भी करती हैं रोज़, उनको याद भी करती हैं, और उनकी तारीफ़ें भी बयान होती हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है अपने ननिहाल की तरफ इंक्लाइंड ही रहता है। क्योंकि बच्चा वालदा के साथ कनेक्टेड होता है, और वालदा अपनी वालदा के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो आपकी शौरी तौर पे और लाशौरी तौर के ऊपर आप ननिहाल के साथ, नानी जान के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। आज बच्चों से पूछे, हाँ जी आपने नानों के घर जाना है या चाचा के पास चलते हैं,
तो यकीनन नानियाल नाना की तरफ, नानी जान की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि आप अपनी अम्मा के साथ, अपनी अम्मी जान के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं और अम्मी जान अपनी अम्मी जान के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो बच्चे को जो जज्बात, जो ख्याल ज्यादा मिलते हैं, जो वो ज्यादा सुनता है जिस चीज के बारे में, जिस शख्स के बारे में, तो वो उसका फेवरेट होना शुरू रहता है नेचुरली। और उसके दूसरी तरफ जब वो ननिहाल की तरफ जाता है तो वहाँ पे रूल्स, डिसिप्लिन और ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाती हैं और नानी के घर में जाके सब कुछ चलो ठीक है हो जाता है। नानी जान मैंने ये खाना है, ये पका ले, चलो ठीक है। नानी जान मैंने जो है ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं, फलां कार्टून देख रहे हैं, चलो ठीक है। नानी जान मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहने, फलां कपड़े पहने, उस कलर के पहने हैं, वो वाले बना दे, चलो ठीक है पुत्र। ये सब मिलता है प्यार हमें ननिहाल की तरफ से। क्या आपके बचपन में भी आपको प्यार ज्यादा ननिहाल साइड से मिला, जिस तरह से हमारे शमशेद भाई ने बताया, और जिस तरह से बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ, ज्यादातर हमारी इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश कल्चर के अंदर, पंजाबी कल्चर के अंदर ननिहाल ज्यादा चंगा लग रहा है। भैया जी ना भाईजान, उसकी वजह भी हमने आपको बता दी क्यों, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि ददयाल साइड से प्यार नहीं मिलता। अगर अपना बचपन मैं थोड़ा सा याद करूं तो आपको हैरानी होगी जान के, जनाब मैं ज्यादा कनेक्टेड रहा हूं अपनी दादी जान के साथ, क्योंकि नानी जान तो मेरी पैदाइश के बाद, कुछ अरसे के बाद शायद फौत हो गई थी, उनको नहीं मिल पाया, a bit sad about it। लेकिन मेरी दादी जान ने ही मुझे नानी और दादियों वाला प्यार दिया, 2-in-1 जनाबे वाला। और मैं कहता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी का अगर सबसे खूबसूरत फनी जोक्स वाला, तंग करने वाला और थोड़ा थोड़ा जो है वो हंसी मजाक वाली बातों वाला, दिल की बात करने वाला जो टाइम गुजरा ना बेस्ट फ्रेंड की सूरत में, वो दादी जान के साथ ही गुजरा। और ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही, थोड़ा सैड भी हूँ कि दादी जान जब दुनिया से रिख्सत हुई तो उनका हाथ मेरे हाथ में था और आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे और अल्लाह का नाम लेते हुए वो यहाँ से रुख्सत हुई। लेकिन उनके साथ जो मैंने प्यार, उनके साथ जो शुगल, उनके साथ जो मोहब्बत बांटी गई, उनसे जो मोहब्बत मिली, वो आज भी दुआओं की सूरत में हर इबादत के अंदर उनको याद करके उन तक वो मैसेज, उनको वापस मोहब्बत और उनको, और उनको जो है दुआएं और उनको एहसाले सवाब दिया जाता है। क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, हमने भी जाना है, लेकिन उनकी यादों को और उनकी खिदमात को, उनकी खूबसूरती को, उनकी जो सर्विसेज हैं आपको, जो उन्होंने दी आपके बड़ों ने, वो बेस्ट हम दे सकते हैं उनको अच्छी यादों में याद करके, अपनी अपनी इबादत के मुताबिक उनको जो है गिफ्ट पहुंचा के, वो हम गिफ्ट दे सकते हैं किसी अच्छे काम को करके, कोई चैरिटी करके, किसी की हेल्प करके, या अपनी दुआओं में उनको याद करके हमको एक गिफ्ट दे सकते हैं और उन तक पहुंचता भी है। वेल, यही जिंदगी है, आना है जाना है और पलट के फिर वापस नहीं आना है, लेकिन जब तक रिश्ते हैं, जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये लम्हात हैं, ये रिश्ते ही हमारी पावर होते हैं, हमारी मेन जो है रूट्स होती हैं, ये रिश्ते ही हमें जो है बनाए रखते हैं, हमें ट्रैक पे रखते हैं। और यकीन कीजिए हमारे हर मुश्किल लम्हात के अंदर
यही इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, दादा दादी नाना नानी ददयाल ननियाल साइड वाले ही माँ, आपके माँ बाप के बाद यही आपका सहारा देते हैं। और इंसान को क्या चाहिए होता है इस जिंदगी के अंदर,

जी हाँ, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। थोड़ा जज्बाती सा मामला हो जाता है कभी कभी आपने को याद करते हुए, और खास तौर पे वो बड़े वो रिश्ते जो इस दुनिया में नहीं रहे, अक्सर उनको याद करके आप हल्का सा जज्बात में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसको जाना ही होता है। हम सब एक लाइन के अंदर हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जीना तो है, सिर्फ जीना ही नहीं, बिल्कुल जीना है नहीं, बल्कि इसको इस टाइम को खूबसूरती बनाना है अपने लिए भी, और आपने इज्जत के लोगों के लिए भी, इज्जत के रिश्तों के लिए भी। प्रोग्राम में बात हो रही है, टॉपिक हमने रखा हुआ है ननियाल वर्सेस दयाल। किस तरफ से आपको ज्यादा प्यार मिला, हर रिश्ते के हवाले से आपकी क्या यादें हैं, और अब आप क्या कहना चाहते हैं, और ददयाल के हवाले से यकीनन आपको आपका टाइम ज्यादा गुजरता है उस साइड पे जहां पे आपकी तरबियत को, आपकी वैल्यूज को, आपके अखलाक को, और आपकी जो है वो हर वर्बल नॉर्मल को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तरबियत का मैदान देखा जाए जहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा आपको मिलता है, तो वो ददयाल साइड ही होती है। और जनाबे वाला और ननियाल साइड देखी जाए तो वहां पे इंडिपेंडेंस, छुट्टियां गुजारना, मनपसंद काम, वो जो आप ददयाल के टाइम पे नहीं कर पाते वो ननियाल में जाके जो है मिलता है। यकीनन इंसान जो है ज्यादातर ननियाल में जाता ही तब है, मोस्टली देखा जाए जब उसको छुट्टियां होती, वेकेशन होती, हॉलीडेज होती हैं, इसलिए वो ज्यादा इंक्लाइंड इंसान सिर्फ होता है। आपका ननियाल में टाइम कैसा गुजरा, क्या आप अपने नाना नानी को देखा, आपको मिला मामू का, खाला जान का प्यार, या आपको मिला ज्यादा प्यार चाचा जान का, चाचा जान का, या दादा जान का? आप किन के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं, ननियाल साइड के कजन्स के साथ या ददयाल साइड के? प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया जो शामिल हो रहे हैं। मिले जुले से रोजाना थे, कुछ लोगों ने ननियाल देखा ही नहीं है, कुछ लोगों ने दोनों साइड ही नहीं देखी, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी यादें ज्यादा हमारे मामू जान के साथ हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे कि मेरी फुफो जान मेरी सबसे बेस्ट है। हाँ जी जनाब, फुफियाँ होती ही बेस्ट हैं, अबू की सिस्टर। प्रोग्राम में शामिल रहिए, अपने पैगाम आप भेजते रहिए, और आपके जो भी सॉन्ग्स होते हैं उसको हम लाइब्रेरी में चेक करते हैं, तो हम लाजमी उसको जो है चलाते हैं। प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा महदूद सा होता है अक्सर, क्योंकि बीच में जिंगल्स भी और कुछ एड्स भी आती हैं, और प्रोग्राम की जो है वो कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। एक कॉलर की फरमाइश के ऊपर लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना चलाया जा रहा है, आएगी आएगी, सुनिए इस खूबसूरत सॉन्ग को। हम मिलेंगे इस खूबसूरत

0: जी हाँ, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम दिल दिया गल्ला आतिफ असलम की आवाज। वाकई में आज हम दिल की बातें कर रहे हैं, दिल दिया गल्ला कर भी रहे हैं ते सुन भी रहे हैं। प्रोग्राम नई सुबह नई सोच और टॉपिक रखा हुआ है ददयाल वर्सेस ननयाल। ज्यादा प्यार, ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी किस तरफ से आपको ज्यादा मिलती है, किस तरफ से ज्यादा आपको एक्चुअल में प्यार मिलता है, कौन आप क्या ज्यादा फेवरेट है, इस पर बात हो रही है। प्रोग्राम के शामिल हुए बहुत ही खूबसूरत से कॉलर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की और उन्होंने ये कहा, हमारे साथ मौजूद थे ड्यूसबरी से जहांगीर साहब और उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ये कहा कि ऐसा ही है कि नेचुरली हम इंक्लाइंट तो अपनी ननियाल साइड पे होते हैं और ज़्यादा प्यार लगता है कि आपको वहीं से मिलता है, लेकिन उन्होंने ये भी इस बात के ऊपर भी उन्होंने बात की कि नाना नानी के जाने के बाद ननियाल की तरफ से प्यार बिल्कुल जो है वो उस तरह से नहीं मिलता जितना जो है वो ददयाल साइड से। उनके ख्याल में जो ननियाल साइड है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शख्सियत, आपकी पहचान, आपका खानदान वो ददयाल साइड है। छुट्टियों में जब हम जाते हैं अपने ननियाल की तरफ तो वाकई में लगता तो ऐसे ही कि प्यार में वहाँ से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन फैक्ट जब आप बलूगत को पहुँचते हैं, आप एडल्ट बन जाते हैं, तो उनके ख्याल में जो प्यार है वो असल प्यार वो ददयाल का ही होता है। मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल सही कहा हर, ये भी बड़ा क्रिटिकल सा पहलू है ननियाल साइड का। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी जो है जिंगल्स और एड्स की ब्रेक है, मिलते हैं उसके बाद।
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए। वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी फराहम करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं, प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड, मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर, 633 हालिफैक्स रोड, लिवरसेज, WF15 8HJ। नंबर मत भूलिएगा 07977317760।
5: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस, वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन।
6: हर्षविल की फिजाओं में बस एक खुशबू, 30 बरसों की मोहब्बत, जायकों की एक कहानी, स्नूटीज पिज्जा बार, जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए। 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर।
7: 2 12 inch pieces for £12, 3 12 inch pieces for £17, 2 100% Angus beef smash burgers for £12, 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12, and 2 loaded fries for £10. Also, finally, 3 tender meals just for £5.
6: Chahe sham ho ya raat ki mehfil, har lamha ban jaye khas, har zaika ban jaye yaad. आए जायकों की इस महफिल में शामिल हूँ स्नूटीज पिज्जा बार, जहाँ हर बार दिल कहे बस यही है असल मजा।
7: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
8: Lanika!
9: Lanika!
10: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। ये लानिका कौन है?
8: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो। आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे।
10: अच्छा, लानिका, वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं?
8: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, उनका बुफे भी कमाल का है। और जानती हो, वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं।
10: खूब पैसे खर्च करके आए होंगे।
8: कंजूस कहेंगे। उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99, फ्राइडे टू संडे $24.99, अंडर 10 $11.99 एंड अंडर 4s फ्री।
10: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए।
8: क्यों नहीं, वो है भी हमारे करीब, पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE, और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं। जरा नंबर मिलाओ 01422613613, अभी बुक कर देते हैं।
11: इन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश।
12: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924 466771, mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
13: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
14: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
15: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
16: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
14: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
13: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
14: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
17: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
18: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
13: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
19: चाय चाहिए तो फिर
20: गो चाय,
19: कभी भी चाहिए तो फिर
20: गो चाय,
19: दिन को चाहिए, रात को चाहिए, हर वक्त चाहिए तो फिर
20: गो चाय।
21: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai, serving the people's favorite Kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more, made fresh at the touch of a button. Perfect taste, perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.

चल दिल मेरे छोड़ दे फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जी हाँ, होता है कभी कभी ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर, चलती राह में इस जिंदगी की प्रैक्टिकलिटीज के अंदर अक्सर हमें धोखे मिलते हैं, हमें डिसेप्शंस मिलती हैं, हमारा दिल टूटता है और फिर इस तरह के गाने बनते हैं। जिन्होंने अभी रेडियो स्टेशन को ट्यून किया है उनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, और आप सबको ये पता चले कि आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 FM एंड 94.7 FM, और प्रोग्राम नई सुबह नई सोच आखिरी लम्हात प्रोग्राम पे कुछ ही वक्त रह गया है, और आपके जो गाने मनपसंद गाने जो होते हैं उसको हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, जितने मिल पाते हैं हम चलाते हैं, अगर ना चल पाए तो माजरत उसके लिए। और प्रोग्राम में शामिल हुए हैं अकमल साहब, और प्रोग्राम की तारीफ की है, अस्सलाम वालेकुम कहा है, वालेकुम सलाम आपको, और उन्होंने अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो है वो गाना तेरे बिन चलाने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो उसको हमने ऑलरेडी क्यू में डाल दिया है, और नेक्स्ट सॉन्ग हम अकमल साहब की फेवरेट उनको ही डेडिकेट किया जाएगा।

प्रोग्राम में बात चल रही थी जनाब, लेकिन चल रही है कि ननियाल साइड या ददियाल साइड मेरे जुन्ने रोजानाथ हमें मिले, और कुछ ने ददियाल साइड की तारीफ की है अभी तक, और कुछ ने ननियाल साइड की, और कुछ ने कुछ लिसनर्स ने ये भी फरमाया है कि हमें तो दोनों का प्यार नहीं मिला, और कुछ को नानी का प्यार नहीं मिला, उनको नानी मिली ही नहीं जब वो पैदा हुए, और कुछ को जो है वो दादी वाली साइड की से प्यार शायद कम मिला है, क्योंकि शायद वो उनके पास नहीं है ज़्यादा। जो हमारी किस्मत में है, तकदीर में है, वो तो हमें मिल के रहता है, और जो हमारे पास मौजूद होता है उसी पे खुश रहना ही जो है वो असल ज़िंदगी है, असल खूबसूरती है आपकी ज़िंदगी की। हर चीज़ जो है वो आपके इख्तियार में नहीं होती है बाज़ुका, और जो आपके इख्तियार में है उसी पे खुश हो जाना ही, उसी पे मुतमिन हो जाना ही ज़िंदगी के साथ और अपने आप के साथ जो है बेहतर रहता है। छोटा सा सफ़र है, गिने चुने से लम्हात हैं, एक तिहाई हिस्सा ज़िंदगी का तो हम सोने में गुजार देते हैं, और एक तिहाई जो है वो जॉब पे गुजर जाता है, और एक तिहाई पीछे बचता है जिसमें आप प्रैक्टिकली आप थोड़ा बहुत लाइफ जीते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने वी बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ। इन लिमिटेड और कन्फाइंड टाइम के अंदर ही हमने अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, तो जो कुछ हमें हासिल है उसमें खुश रहना ही, उसको ही यादगार बनाना ही जो बेहतर रहता है। प्रोग्राम में बात ही होगी इस टॉपिक के ऊपर कि आपको प्यार किस तरफ से मिला, ददियाल साइड से या ननियाल साइड से, और गाना तेरे बिना अरिजीत सिंह की आवाज़, अकबर साहब जो थे हमारे लिसनर, उन्होंने कहा, उनकी फरमाइश पर चलाया जा रहा है, तो उनको ये सॉन्ग, तो उनको ये गाना डेडिकेट करते हैं। सॉरी अक्सर आवाज में कभी कभी कुछ खटखटाहट सी हो जाती है। सुनिए खूबसूरत सॉन्ग, और आप अपनी आवाज़ों को और अपने कानों को महसूस कीजिए खूबसूरत सॉन्ग के साथ।

हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। आशा भोसले मरहूम, जिनका भी कुछ दिनों पहले ही इंतकाल हुआ, उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं आवाज़ आपके आरजे तौकीर की। और प्रोग्राम नई सुबह नई सोच और ननिहाल रुदियाल के हवाले से बात चल रही है, और उस हवाले से हमारी बहुत ही लेजेंडरी प्रेजेंटर नसरीन जी, उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होने के बाद दुआएं दी हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने तारीफ़ों के फूल बांधे हैं। बहुत शुक्रिया नसरीन जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि इट्स वेरी टचिंग बिकॉज आई वॉज फार अवे फ्रॉम नान के और दाद के, बट वी ऑलवेज स्टे विद देम ओनली ऑन हॉलीडेज। तो उन्होंने ये भी कहा कि दे बोथ साइड्स आर प्रीशियस, नो वर्ड्स, अल्लाह सलामत रखे। तो उन्होंने कहा, यही कहा है जनाबे वाला कि जी हाँ, कि उनको ये अफसोस है, उनको ये थोड़ा सा जज्बातीत फील होती है कि उनका ज़्यादा टाइम जो है ददयाल ननिहाल से दूर रहा, और कभी कभी हॉलीडेज पे उनको टाइम मिला। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात की कि हाँ जी, कि ये दोनों साइड्स ही कीमती होती हैं, अनमोल होती हैं, प्रीशियस होती हैं, और अल्लाह ताला दोनों साइड के जो हमारे रिश्ते हैं, जो भी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत और खुश और आबाद रखे। क्या बात की उन्होंने, माशाल्लाह, मज़ा आया उनके कमेंट्स पढ़ने का।

ननिहाल वैसे तो दयाल साहब, दयाल की बात चल रही है और आप साहिबान, आप लिसनर्स, आप खूबसूरत अशखास जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके कमेंट्स हमारे लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। और यकीनन जब आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपने अपने कमेंट्स देते हैं, एक कनेक्शन फील होता है कि जो आपकी तरफ बातें पहुंचाई जा रही हैं, आपको यादों के दरीचे पे लाया जा रहा है, जिस रोमांटिसिज्म के अंदर, जिस खूबसूरत यादों के अंदर आपको ले जाया जा रहा है, वो इफेक्ट कर रही है मोहब्बत में, प्यार में, कम्युनिकेशन के अंदर। रिस्पांस बड़ा मायने रखता है और जब आप लोग रिस्पांस करते हैं कॉल करके और मैसेज भेज के, तो यकीन कीजिए एक अपनियत का एहसास होता है और आपको लगता है कि आप वाकई में जो है वो दिलों तक पहुंच रहे हैं। और जी हाँ, दिलों तक पहुंच रहे हैं तो हमारा टारगेट है, हमारा एम है और हमारी ख्वाहिश है कि आपको मिलाया जाए आपको आपके दिल के साथ, क्योंकि रेडियो संगम है दिलों को मिलाने वाला। दिलों को मिलाते हुए, आपकी सुनहरी यादों को सजाते हुए, आपको जज्बाती तौर पे भगाते हुए और झूमने पे मजबूर करते हुए, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आपको एंटरटेन करने के लिए जवाद अहमद की आवाज में खूबसूरत सॉन्ग ओ केंद्रीय सैया मैं तेरियां, सब लिसनर्स के लिए एंजॉय कीजिए अपने नाश्ते के टेबल के ऊपर, क्योंकि अक्सर इतवार वाले दिन नाश्ता लेट ही होता है। अपने नाश्तों के साथ, अपनी शॉपिंग के साथ और जो जो आप काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए लॉन्ग ड्राइव पे हैं, या पे शिफ्ट के पर मौजूद हैं, या घर के कामों में मौजूद हैं, सुन रहे हैं हमें, इस गाने को सुनिए और हमें याद रखिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। मिलते हैं इस खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

0: जी हाँ, तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। और मैं देख रहा हूँ घड़ी की तरफ जनाब, इस वक्त कुछ लम्हात रह गए हैं आप लोगों से जुदा होने के लिए, और प्रोग्राम के आखिरी दो मिनट और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। मैं था आरजे तौकीर आपके साथ, प्रोग्राम का नाम नई सुबह नई सोच, और टॉपिक हमने रखा हुआ था काफ़ी हल्का फुल्का सा, जो कनेक्ट है हर किसी की ज़िंदगी के साथ। हमने बात की आज ननियाल वर्सेस अदयाल, कहाँ पे हमारी यादें ज़्यादा या कहाँ पे हमें अच्छा ज़्यादा टाइम वक्त ज़्यादा अच्छा वक्त और अच्छा टाइम गुजारा, और मिले जुलों से रोजाना मिले हमें, और किसी ने ये कहा जी कि हमें तो दोनों का प्यार नहीं मिला। कुछ नहीं, ये कह रही कि अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके, हम सिर्फ छुट्टियों में जाते थे पाकिस्तान और वहाँ पे गुजारते थे वक्त अदयाल और ननियाल के साथ। और कुछ ने कहा जी कि वाकई में ननियाल साइड पे नानी जान से ज़्यादा प्यार मिलता है। कुछ ने कहा कि वो दादों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, और दादा दादा दादा दादी दादा दादी सो जो दादा दादी हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं। और कुछ ने ये भी कहा है कि जो असल आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, आपका ख़ानदान है, वो ददयाल साइड होती है। ननियाल साइड तब तक ही है जब तक आपकी नाना नानी ज़िंदा है, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो वो शायद उतना प्यार आपको नहीं मिलता। और एक कॉलर ने ये भी कहा हमें कि आप देखें पहचान आपकी जो ख़ानदान है वो बाप से और आपके ददयाल से होता है, जो हर वक्त आपके साथ होते हैं। जी हाँ, ये मिले जुले रोजानात मिली जुली बातें रहीं, और बड़ा अच्छा लगा दोबारा से इस पहलू पे बात करके। हमारी कोशिश होती है कि हम उस टॉपिक को रखें, उस पॉइंट को सामने रखें, उस उनवान को सामने रखें जो आप के साथ और हमारे सब हम सब लोगों के साथ कनेक्टेड है, और आपको यादों को दरीचे में ले जाया जाए और आपको महसूस किया जाए अलॉन्ग विद खूबसूरत सी मेलोडीज। और बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम आज का, और आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं आपको छोड़े चले जाता हूँ इस याद के साथ, इस जज्बे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, शाद रहेंगे, मुझे भी याद रखेंगे, अपनों को भी याद रखेंगे, और अपनी गुजारेंगे ज़िंदगी खूबसूरत, क्योंकि सोच बदलेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय शाय।
1: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker and on our dedicated app, download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
2: News centre at midday. A major incident's been declared after two people died in an explosion at a property in Bristol. Police were called to the address in Sterncourt Road around 6:30 this morning and evacuated residents living nearby. Plans to keep Britain flying this summer have been set out after concerns about a possible shortage in jet fuel due to the ongoing war in the Middle East. The government says airlines will be allowed to group passengers from different flights onto fewer planes to avoid carrying empty seats. The Transport Secretary thinks Zach Polanski is not fit to lead the Green Party because of his criticism of the handling of the arrest of the Golders Green suspect. Two Jewish men were stabbed in North London on Wednesday. Heidi Alexander says the Green leader retweeting a post suggesting officers were heavy-handed was disgusting. Jewish author Melanie Phillips agrees.
3: I think he is a menace to public safety. He is using his Jewish ancestry as a shield to protect him from what he's doing. He himself is inciting hatred.
2: Mr. Polanski's apologised for sharing it on social media. Donald Trump has threatened to withdraw more troops from Germany on top of those already being redeployed. The US president's already ordered 5,000 personnel to be withdrawn from the country as part of a dispute with the German chancellor. Military analyst Sean Bell says the move shouldn't have a huge impact.
4: US forces number about 68,000 total across

0: about 12 countries of Europe. And it's not the first time that President Trump's threatened to reduce the numbers. In his first term, he threatened to reduce them by 10,000. That didn't materialise.
1: Two women have died while trying to cross the English Channel in a small boat carrying around 80 people. Three other passengers are reported to be in a critical condition. And Celtic are looking to move joint top on 70 points as the battle for the Scottish Premiership resumes. But they have to beat Hibs at Easter Road in the midday kickoff. That's the latest.
2: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
3: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
4: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल वन ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewellers.
5: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specialises in bridal wear, grooms wear and children's clothing for all occasions.
6: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein Radio Sangam ka naam aur paye 100 pound ki chhoot on bridal wear.
5: Also, more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
6: Amazing Asian clothing, also made to measure, orders with perfect fitting.
5: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewelry, bangles, and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield HD1 6LQ.
6: Call 01484-769926.
5: Bobby Fashion. Fashionable living.
4: And now with a free gift with every purchase.
7: जागते रहना जागते रहना
8: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
7: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
8: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
7: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
7: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
10: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
11: LemFi means a quicker and safe way to send money.
12: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
11: LemFi means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
12: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
11: Download the LEMFI mobile app today.
12: LemFi is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

रेडियो संगम के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों चाहतों और मान के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर जी आपका मेजबान शमशेद असलम। आदाब कबूल कीजिए, यहाँ से वहां तक और वहां से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। अपना ख्याल तो रखते हैं ना आप, अच्छी बात है, अपना ख्याल रखा कीजिए। और आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 FM और 94.7 FM। और तो जनाब सुनाइए, कैसे हाल अहवाल, कैसी है आपकी चाल, कैसे हैं आपके मिजाज। अपना हाल अहवाल बताने के लिए आप हमारे साथ रابطے में आ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का कॉलिंग नंबर 01484817705। और अगर आप हमें मैसेज करना चाहेंगे तो 07444202155। और गोल गोल दुनिया के कोने कोने में आप हमें सुन सकते हैं जनाब www.radiosangam.co.uk पर। जी हाँ जनाब, इसके अलावा के जरिए हमें सुनते हैं जनाब मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, ग्लासगो, शेफील्ड, नेल्सन, ब्लैकबर्न और लीड्स के इलाकों में। आप हमें कहां कहां से सुन रहे हैं ये बताने के लिए आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो आपका दिल चाहे कॉल कर लें या मैसेज कर लें, मर्जी तुम्हारी। तो इसी उम्मीद और यकीन के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि हमारे सुनने वाले गोल गोल दुनिया के कोने कोने में, जिस कोने में सुन रहे हैं, यकीनन ठीक होंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ देने का बेहद शुक्रिया।

दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया।

बालम हर जाई के आ जा तेरी याद आई। मिसेज रहीम आपका बेहद शुक्रिया, मिसेज गफार हमारे साथ, मोहम्मद जैन आपका बेहद शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें हमारे साथ साथ। रेडियो संगम 107.9 FM शमशेद असलम आपके साथ हाजिर खिदमत। मोहम्मद नईम आपने साथ दिया आपकी पसंद का गाना, एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।

रेडियो संगम 107.9 FM एंड 94.7 FM। ताहा भाई आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, अक्सरियत से डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें कि अकाब अकेला उठता है जबकि कबूतरों के झुंड होते हैं, और असल बुलंदी और अजमत अकेले सफर करने वालों को नसीब होती है। अक्सर सच्चाई और कामयाबी का रास्ता तन्हा होता है, लेकिन वही रास्ता इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाता है। जो भीड़ के पीछे चलता है वो कभी उफक तक नहीं पहुंचता, वो कभी आसमानों तक नहीं पहुंचता। लिहाजा अकेले उड़ने का हौसला पैदा करें, क्योंकि आप लोगों का मुकाम जो है वो आसमानों से भी बुलंद है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप में हौसला होना चाहिए। नुमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मोहब्बतों भरे मैसेज भेजे, ढेर सारी तारीफों का शुक्रिया। नवीद भाई, आपने स्वीडन से याद किया, बेहद शुक्रिया आपका भी, आपने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। सानिया जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, आप कहते हैं जी मेरे लिए भी गाना लगा दें। क्यों नहीं जी, हम आपके लिए सारे के सारे गाने आपके नाम कर देंगे, आप हुक्म तो करें। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, एक शेर याद आ गया कि तू हुक्म तक कर ते मैं बजदी आसा, तू हुक्म तक कर मैं बजदी आसा, जे जुत्ती पावा ते काफर आके। आप पता नहीं ये शेर आपको कैसा लगा। वो कहते हैं ना, बातों से बात निकलती है, बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। खैर जी, हम आपको बहुत ज्यादा दूर लेके नहीं जाएंगे, इनको सुनिए ये क्या कहते हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप हमें मैसेज और कॉल करेंगे। नंबर हमारे वही जो कि आपके दिल पर लिखे हुए हैं। हाँ जी, दिल पर। चलें जी, फिर भी बताते हैं आपको, हमारा कॉलिंग नंबर है 01484817705, मैसेज के लिए 07444202155। रेडियो संगम 107.9 FM। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: you had an accident driving your taxi, has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: हर सिल की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
4: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12, 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12, and 2 loaded fries for £10. Also, finally, 3 tender meals just for £5.
3: Chahe sham ho ya raat ki mehfil, har lamha ban jaye khas, har zaika ban jaye yaad. Aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon, Snooty's Pizza Bar, jahan har baar dil kahe, bas yahi hai asal maza.
4: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
5: Kya aap tambaku noshi chhodna chahte hain? The Kirklees Council Wellness Service har kadam par aapki madad ke liye maujood hai. Agar aap tambaku noshi chhodne ke liye taiyar hain, to hamari team aapki madad kar sakti hai. Hum muft tambaku noshi chhodne ki madad, patches, vapes aur gum faraham karte hain jo tambaku noshi chhodne mein madad karti hai. Tambaku noshi chhodna aapki sehat ko behtar banata hai, aapke khandan ki hifazat karta hai aur sabse ahem cheez paise bachata hai. और हमारी मदद से आप तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirklees wellness service.co.uk kirklees council wellness service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़िए
6: थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस इज हियर टू सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleeswellnessservice.co.uk or call 01484 234095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
7: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
9: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
10: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
8: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
8: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
11: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
12: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
13: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
14: आर यू पीपिंग टॉम?
13: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
15: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
13: Case closed.

खुश आमदीद कहेंगे खूबसूरत से गाने के बाद। आइए जनाब तैयबा खान की आवाज आप सभी समातों की नजर। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो।

शानदार अब आपने इस गीत को पसंद किया। सहरज नवाज हमारे संग, सामिया रानी आपका भी बहुत शुक्रिया।

उठा उठा ले जा चिट्ठी मेरे डोले। साहब यही जिंदगी है, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी नहीं रुकती, ये सबसे अच्छी बात है। जिंदगी अगर ठहर जाए तो जिंदगी नहीं रहती। बेहद शुक्रिया आप सभी समातों का। ये आने वाला गीत आप सबके नाम और ये स्पेशली फरमाइश किसकी है जी? ये नूरुल हुदा ने फरमाइश की है, तो ये गाना आपके नाम हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया।

0: James as head coach. The club finished in 16th place in the championship. That's the latest.
1: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
5: हां जी याद है
4: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
5: हां जी चाहिए
4: चांदी चाहिए
5: हां जी चाहिए
4: कहां से लोगे
5: चाचा ज्वेलर्स
4: फिर से बोलो
5: चाचा ज्वेलर्स
4: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
5: चाचा ज्वेलर्स
6: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
7: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
8: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 Queen's Road, Halifax, HX1 4NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
9: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है. अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है. हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirklees wellness service.co.uk Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ो
10: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
11: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
12: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
13: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
11: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
10: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
11: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
14: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
15: अभी कॉल कीजिए 01484549947
10: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
16: चाय चाहिए तो फिर
17: गो चाय
16: कभी भी चाहिए तो फिर
17: गो चाय
16: दिन को चाहिए रात को चाहिए हर वक्त चाहिए तो फिर
17: गो चाय
18: need a proper chai fix for when you're on the go skip the queue and head to go chai serving the people's favorite karak chai creamy kashmiri chai coffee and much more made fresh at the touch of a button perfect taste perfect temperature and hard to beat on price available 24/7 find go chai at your local petrol station for exact locations visit gochai.co.uk Go Chai, proper chai, anytime.
19: LemFi means a quicker and safe way to send money.
20: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
19: LemFi means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
20: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
19: Download the LEMFI mobile app today.
20: LemFi is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

वेलकम बैक एंड खुश आमदेद जी आया नू पहर राग ले अच्छो खैरी नाल तेरे वो साढ़े नाल लाल बिल्कुल जी रेडियो संगम के साथ रहेंगे तो हम आपको बोर नहीं होने देंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे आपसे, आपकी पसंद के गाने प्ले होंगे और क्या चाहिए जी आपको। और अगर ड्राइविंग करते हुए हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं ना गाने सुनने के लिए, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गाड़ी को जरा ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही प्यार से, अपने आले दुआले जो आपके लोग हैं ना, आपके सज्जे खबे, उनको भी जरूर ध्यान में लाइएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, कोशिश करें कि किसी का मान एतबार एतमाद और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलहियों के नक्श रह जाते हैं जो कि पूरी जिंदगी याद रहते हैं। सामिन अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई भी इंसान जो आपको तकलीफ देता है वो आपको पूरी जिंदगी याद रहता है। आप उसे भूलने की कोशिश भी करें लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आएगा, कभी जिंदगी में उसका और आपका आमना सामना हो जाए तो आपको वो सारी बातें एक फिल्मी कहानी की तरह आपके जहन में घूमना शुरू कर देती हैं। बस आप इतना सोचिए कि जिंदगी है कितनी सी, 4 दिन की चांदनी है अभी, और फिर किसने इस दुनिया में सदा रहना है। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें।

शाहनवाज भाई, आपने गाने की रिक्वेस्ट की है, हमारा काम यही है जी आपको खुश रखना। कोशिश तो पूरी करते हैं, बाकी फिर देखें क्या होता है। तो ये गाना मैंने ढूंढ लिया जी आपके लिए, आपके ही नाम करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।

रेडियो संगम 107.9 एफएम एंड 94.7 एफएम। शमशेर असलम आपके साथ मौजूद है जी। सामिन, जिंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं और आप भी नहीं है। जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम किसी के लिए बेहतरीन याद होते हैं और कुछ लोग हमारा नाम सुन के ही ना गुस्से में आ जाते हैं, और कोई हमारे करीब रहने को तरसता है तो कोई हमारे साए से भी दूर भाग जाना चाहता है, और किसी के लिए हम मिसाल और किसी के लिए सबक होते हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं होते। इसलिए कभी खुद को इसलिए ना अजियत दें कि कोई आपकी कदर नहीं करता, और कभी किसी को अजियत ना दें कि वो आपकी कदर करता है। इस दायरे में रहें कि दायरे के एक हिस्से में अगर आप अच्छे हैं तो बुरे ना बने, और दायरे के दूसरे हिस्से में अगर बुरे हैं तो अच्छे बनने की एक्टिंग ना करें। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से खुद को दूर रखिए। अपना जायजा खुद लीजिए। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने गरीबान में जाएंगे। खुद को अच्छाई की तरफ माइल कीजिए, और कभी कभी खुद को भी महसूस करें, कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं। वसी भाई क्या कहते हैं आप? शुक्रिया जी मिसेस गफार साहिबा। सोहेल भाई आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। नादिया जी हमारे साथ, बड़ी मेहरबानी जी थोड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी साड़ा साथ दे रहे हो। आजकल हर बंदे मसरूफ है जी, अगर कोई बिल्कुल वेला है ना, ओनू भी पूछन भाई जी की मसरूफियात ने, कहेगा जी मैं बहुत बिजी हाँ जी, मेरे को सिर खुरकन का टाइम नहीं। बस जी यही है जिंदगी, हर इंसान अपनी जिंदगी में मसरूफ है। तो प्यारा सा गीत आप सभी के नाम, हमारे साथ रहिएगा।

खुश आमदीद जी आया नू सत बिस्मिल्ला रेडियो संगम सामिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारा मुआशरा जो है उसमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हम देखते हैं कि किसी भी मकाम पर अक्सर हम रोड पर सफर करते हैं, दफ्तरों और घरों में बहुत सी ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं कि कोई इंसान भी किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। जिंदगी के हर मकाम पर अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। और इसे कम करने के लिए हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि एक दूसरे की बात को सुने, समझें, दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। फौरी तौर पर किसी बात का रिएक्शन बेहतर नहीं होता, बात को सुन के समझ के उसका जवाब दें। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम आराम और प्यार मोहब्बत से हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत से लड़ाई झगड़ों के बाद उसे हल कर पाते हैं। और बाद दफा हम रोड्स पर देखते हैं जी, हर किसी को जल्दी होती है और हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में होता है। हर बंदे को जल्दी है, कोई भी किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मसला सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं सीख रहे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करें। तो आइए जनाब गीत सुनाते हैं, कहीं आपका सब्र भी जवाब ना दे जाए। आप भी सोचेंगे सब्र की बातें करते करते हमारे सब्र को मत आजमाए। तो जनाब हम मजीद आपको आजमाइश में नहीं डालेंगे, आपको प्यारा सा गीत सुनाएंगे, आपने रहना हमारे साथ साथ।

वेलकम बैक सी सोहेल भाई से हमारी बात हो रही थी और आप हमें सुन रहे हैं जी www.radiosangam.co.uk पर। बेहद शुक्रिया, आपने इतनी दूर से ज्वाइन किया। देख लें जी सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया जो कि वक्त की एक अहम जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक अहम प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक आम इंसान की रसाई भी है। कि एक आम आदमी अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर करता है और वो एक क्लिक पर कहां से कहां चली जाती है, कहां से कहां पहुंच जाती है। और जो प्लेटफॉर्म जितना अहम होता है उसे इस्तेमाल करते वक्त उतनी ही एहतियात की जरूरत होती है। जैसा कोई भी खबर हो, कोई भी बात हो तो बगैर तस्दीक के उसे आगे शेयर नहीं करना चाहिए। बात लोग होते हैं जी खबर सामने आई और फौरन से शेयर कर दी, ये भी नहीं पता कि वो सच है या झूठ है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए हम पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, दुनिया भर की खबरें हासिल कर रहे हैं, अपने अजीज व अकारब से राब्ते में रहते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। और इसके अलावा बहुत से लोग जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बस देख लीजिए कितने फायदे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका मस्बत इस्तेमाल कीजिए। यही खास बात आपसे कहनी थी कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। रेडियो संगम 107.9 FM और 94.7 FM हमारे साथ देने का बेहद शुक्रिया।

एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, हमारी हो चुकी है जवाब से। आप किसी की ज्यादती के बावजूद खामोश रहें तो कुदरत जवाब देती है। आप मुआफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तशहीर से छुपते फिरें और कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत डाल देती है। ये कुदरत के फैसले हैं जिन्हें इंसानी अकल समझने से कासिर है। इज्जत उनको दी जाती है, मांगी नहीं जाती, जो इज्जत के काबिल होते हैं। और कहते हैं कि अपनी जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा दूसरों को माफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। शायद भाई हमारे साथ, आपका बेहद शुक्रिया। नवीद भाई आप भी सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बतों का। शाह नवाज भाई शामिल हुए, आपने प्रोग्राम की तारीफ की और इस आवाज को पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी, आपकी समातें खूबसूरत हैं। तो आपके नाम भी एक प्यारा सा गीत है जी, हमारे संग संग।

रेडियो संगम का स्टूडियो शमशेद असलम आपके साथ हाजिर हिदमत। जहीर भाई आपने हमारा साथ दिया, इसके अलावा आमर अली हमारे संग संग, तो सैफ भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। सामने यकीन जानिए, जिंदगी का एक निराला लुत्फ तब महसूस होता है जब आप लोगों को वजाहतें देना बंद कर देते हैं और उन्हें उनकी खुशफहमियों में जीने देते हैं। जब आप हफा होना छोड़ देते हैं, मनाना छोड़ देते हैं और उन्हें वैसे ही नजरअंदाज करना सीख लेते हैं जैसे वो आपको किया करते थे, और जब आप उन लोगों की तलब से आजाद हो जाते हैं जिनकी तवज्जो हासिल करने के लिए आप कभी तड़पते थे, और अक्सर वो सुकून जिसकी जुस्तजू में हम दूसरों की चाह में खुद को खो देते हैं, हमें तब नसीब होता है जब वो हमें ठुकरा देते हैं और हम अपनी जात में लौट आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जी कि अपनी भी कदर कीजिए, ये नहीं कि आप दूसरों के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दें। वो किसी ने क्या खूब लिखा है जी कि कोई अपना नहीं है अपने सिवा, कोई अपना नहीं है अपने सिवा, दूसरा दूसरा ही होता है। तो यकीन कीजिए इस बात पे कि आपके सिवा आपका कोई नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप नाब नंबर मिला सकते हैं 01484817705 पर, और आप हमें मैसेज करते हैं 07444202155 पर। यह रेडियो संगम 107.9 एफएम एंड 94.7 एफएम। एंजॉय कीजिएगा इस गीत को और हमारे साथ रहिएगा।

एक प्यारा सा गीत आपके नाम करेंगे। रेडियो संगम, एंजॉय दिस ट्रैक। मोहम्मद सफीर हमारे साथ रहिएगा, यही गीत आपके नाम भी।

बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकराम, आप हमारे संग संग हैं जी। एहसान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा काशिप ने हमारा साथ दिया, यही गीत आपके नाम भी।

शहजाद वसीम, आपका भी बेहद शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप हमें सुनते हैं जनाब www.radiosangam.co.uk पर। हमारा साथ देने के लिए जनाब कॉल कीजिएगा 01484817705 पर और मैसेज करेंगे 07444202155 पर।

बेहद शुक्रिया अबू बकर आपका भी, आपने हमारा साथ दिया। शाहनवाज भाई थैंक यू वेरी मच अगेन, हमारे साथ रहिएगा। लीजिए एक और प्यारा सा गीत आपके नाम करते हैं, हमारे संग संग रहिएगा।

0: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
1: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
2: Jagte rehna. Jagte rehna.
3: So jaunga to kya hoga bhai?
2: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge. क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700.
4: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, groom's wear and children's clothing for all occasions.
5: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein Radio Sangam ka naam aur paye 100 pound ki chhoot on bridal wear.
4: Also more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
5: Amazing Asian clothing also made to measure orders with perfect fitting.
4: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield, HD1 6LQ.
5: Call 01484 769926.
4: Bobby Fashion, fashionable living.
1: And now with a free gift with every purchase.
6: लानीका
7: लानीका
8: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानीका कौन है
6: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानीका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
8: अच्छा लानीका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है
6: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
8: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
6: कंजूस कहेंगे
1: उनका बुफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10s 11.99 and under fours free.
8: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए.
6: क्यों नहीं? वो है भी हमारे करीब Pelon New Road Halifax HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं. जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं.
9: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम Yani Radio Sangam ki advertisement. Radio Sangam ka bahut bada platform use kare. Radio Sangam par advertisement kare aur apne business ki awaaz lakhon logon tak pahunchaye. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

संगम। लोग मुझे पूछते हैं तुमने उसमें क्या देखा, लोग मुझे पूछते हैं तुमने उसमें क्या देखा, मैंने कहा जब उसे देखा उसके बाद कुछ नहीं देखा।

जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, एक उम्र लग सकती है बयान करने को, एक उम्र लग सकती है बयान करने को, मैंने उतनी मोहब्बत की है तुमसे।

सुनो ये चंद लम्हे हैं, मोहब्बत से बसर कर लो, ऐन मुमकिन है हवा के दोष पर एक दिन तुम्हें पैगाम जी आए, वो जिनकी जान थे ना तुम, वो जान से हार बैठे हैं।

भेजा याम की तलही को भी हंस के नाचे, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 FM एंड 94.7 FM। आपके साथ मौजूद है जी शमशेद असलम, आतिफ असलम और कुरतुलैन पलोच की आवाज आपकी स्मार्टफोन की नजर। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारा साथ दे रहे हैं। एक और प्यारा सा गीत आपकी समातों की नजर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।

वेलकम बैक कहना चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, जिंदगी रही सांसों ने वफा की, तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इस गीत को एंजॉय कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, सोने रब दे हवाले।

अल्लाह अल्लाह अल्लाह नुसरत फतेह अली खान साहब उन्हां दी आवाज रेडियो संगम दे राही तुसी रिसीव कर रहे सी ते कबूल करो अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल नमस्ते जय मसीह की निर्मल सिंह तुहाडे नाम खातिब है तुसी सुन रहे हो रेडियो संगम दी नशरियात ड्राइव टाइम शो मेरा और तुहाडा साथ पांच बजे तक रहना इहदे च अज दे प्रोग्राम च आपां गजलां शामिल करांगे उम्मीद है तुसी अज दा प्रोग्राम है जिहड़ा मेरे नाल नाल रह के एंजॉय करोगे रेडियो संगम दा वही जाने पछाने नंबर है रेडियो संगम 107.9 FM 1 ते तुसी सुन रहे हो ओ 1484817705 ते रेडियो संगम दा व्हाट्सएप नंबर 07444202155 रेडियो संगम दी ऐप डाउनलोड कर सकते हो नेट दे जरिए दुनिया च किते भी बैठे हो तुसी सुन सकते हो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਰੇਡੀਓ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਐ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

रेडियो संगम बारे आप गल कर रहे सी सब बहुत सारिया जुबाना दे विच गलबात करने वाला रेडियो रेडियो संगम अज तुसी निर्मल सिंह दे नाल गजलां सुनांगे आपां ते अपना इसे तरह शबाना साहब होना ने साहबा होना ने शबाना ने तुहानू सारयां नू सलाम किया कैलेंडर जी वेलकम बहुत शुक्रिया टू वन फाइव सैवन ये लास्ट फिगर है तुहानू सारयां नू सलाम किया प्रोग्राम नू कहिंदे जी शुरुआत तो चंगी लगती है यह है गुलाम अली साहब होना की आवाज में गजल नादिया साहबा ते सुल्ताना साहबा अज मैं क्या डरदे डरदे पहले ही ना ले दिए कितने मुड़ के कहना फिर लो जी तुसी तो साडा ना ही नहीं लेंदे वेखो थोनू इन कॉल कीतियां इन्ने हरी मैसेज छड़े तुसी तो किसी की गल ही नहीं सुनते बिल्कुल मैं क्या जी अज पहला पहला ही सुल्ताना साहबा होना नू याद कर ला ते ऐ जिहड़ी गजल है सुल्ताना जी शबाना जी ये तोडे वास्ते है सुनो जरा ये गुलाम अली साहब होनी दी आवाज की कहिंदी है ब्रेव हार्ट

सुल्ताना जी तुहानू भी यह अज की गजल सी जिहड़ी गुलाम साहब की पसंद आई होनी है हाजी आफताब साहब हिकमंड वाइक तो है मुख्तियार जी तुसी भी हिकमंड वाइक तो है ते तुसी ने शदाई साहब नू सलाम भेजिया वालेकुम सलाम

एक होर आपा गजल सुनते हैं नूरा लाल दी आवाज रेडियो संगम दी पेशकश आवाज में हद आवारगी में हद से गुजर जाने को जी चाहता है

मास्टर महबूब साहब ड्यूसबरी तुसी सुन रहे होगे एक गजल तुहाडे नाल है जहांगीर साहब ए भी तुहाडे नाल सैम साज अंजम चट्ठा जुबैर चट्ठा ए सारे दी सारी टीम ड्यूसबरी तो आते तुहानू सलाम करे इस तो बाद एक ब्रेक होनी है ब्रेक तो बाद फौरी आपा आ जाना पर तुसी रेडियो दे नेड़े बह जाना किसे ए ना होवे कोई ऐसी गल होवे जेड़ी तो तुसी मरहूम रह जाओ

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: हर सफर की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
3: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
2: chahe sham ho ya raat ki mehfil har lamha ban jaye khaas har zaika ban jaye yaad aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon Snooty's pizza bar jahan har bar dil kahe bas yahi hai asal maza
3: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
4: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? કેટલીસ કાઉન્સિલ વેલનેસ સર્વિસ તમને દરેક પગલા પર ટેકો આપવા માટે કહી છે. જો તમે ધૂમ્રપાન છોડવા માટે તૈયાર છો તો અમારી મૈત્રીપૂર્ણ ટીમ મદદ કરી શકે છે અમે ધૂમ્રપાનની તૃષ્ણાઓ ઘટાડવા અને છોડવાનું સરળ બનાવવા માટે પેચ વેપ્સ અને ગમ સહિત મફત ધૂમ્રપાન બંધ કરવા માટે સપોર્ટ પ્રદાન કરીએ છીએ ધૂમ્રપાન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય છે તમારા પરિવારનું રક્ષણ થાય છે અને ખરેખર મહત્વની બાબતો માટે તમારા પૈસા બચાવે છે અને અમારા સમર્થનથી તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે આજે જ kakleeswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો Kirklees Council Wellness Service કાયમ માટે છોડી દો
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
6: Jagte rehna. Jagte rehna.
7: So jaunga to kya hoga bhai?
6: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka aur iske saath ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
7: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
6: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
7: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
6: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
8: आई बीन टास्क टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
9: आर यू पीपिंग टॉम
8: सैडली इट wasn't in there so I pulled out my pencil to draw my own conclusions it was broken yes it was pointless then it hit me advertising on this local radio station's the answer it's low cost effective and memorable
10: to advertise here on Radio Sangam click on
9: radiosangam.co.uk, then advertising.
10: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
12: Roton ko hasane wala, dilo ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.

न्यूज ब्रेक आ रही है खबर खुबर भी सुनिए भी दुनिया च हो की रहा कि हो ये ना हो असी पासे जी रह जाइए हर फीर च बैठे बैठे कि पता ही ना लगे दुनिया च की हो रहा।

हमीदा साहबा ये लंदन तो है ते तो सारे नु ही रेडियो संगम दे राही सलाम कह रहे हैं इकरा साहबा रऊफ हाशमी साहब जन्नत इकबाल साहबा नेथन जवेद पटी ये सारे ब्रेडफोर्ड तो आए तुहानू सब नू सलाम कहिंदे आ जन्नत इकबाल साहबा जिहड़े रेडियो संगम दी एडमिन च भी है रहे भी है अजकल थोड़ा उन्होंने किसी होर कंपनी ने हायर कर लिया यानी किसी कंपनी तो इन्हों काम काफ़ी मिल गया तो पता काम भी दी भी तो इतने प्रॉब्लम है ना तो अपनी जॉब न ज़्यादा फोकस कर रहे अजकल मेरे लिए उन्होंने स्पेशली एक तो मेरे मैनू गाइड करने वास्ते एज ए प्रजेंटर उन्होंने बहुत मेहनत की थी वैसे भी मेरे दुख दे विच काफ़ी शरीक होए एहो जिहा नेचर साडा जरूर होना चाहिए कि जदों किसी ते कोई मुश्किल बीमारी खमारी दी जां वैसे भी कोई तो सानू जरूर ओदियां बाहां बन के ओदे नाल खड़े होना चाहिए लंबी लंबी उम्र जन्नत साहबा नू ओ दो जहां दा वाली है ओ देवे एहो जे बच्चे अपने माँ बाप दा नाम उच्चा कर दिया ते मेरिया भी दुआवां जन्नत साहबां दे नाल है फरीहा परवेज दी आवाज रेडियो संगम दी पेशकश तुहाडे सारयां दे नाल करदे आ

वाह वाह वाह वाह क्या बात है निकले मेरे अरमान फिर भी ए कम निकले इकबाल साहब ए इनियां लिखता शायद तुसी मैं गलत ना हुआ था तुसी पढ़ दे जरूर होंगे सुन दे जरूर होंगे

हजारों ख्वाहिशें निकली मगर फिर भी कम निकली। हम तेरे कूचे से निकले मगर फिर भी बहुत कम निकले। मिर्जा गालिब साहब दा एक कलाम ए बड़ी डूंगी शायरो शायरी है ते कदे कदे सानू इन्ना वाल भी ध्यान देना चाहिए। अनीस साहब लिस्टर तो है। अनीस साहब आलवेज साढ़े नाल नाल सुनते रहेंदे है। लिस्टर तो तुहानू सलाम कहिंदे है। उन्हां दी फैमिली बलविंदर सिंह ਇਹ ਵੀ ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਫਾਟਾਂ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ अवतार सिंह बिल्डर बिक्की ए मिड लैंड स्ट्रीट तो है। बाबा सिंह बोगड़ परमजीत सिंह टेलर मास्टर थे उन्हां दी फैमिली अर्शलान ते उन्हां दी सारी टीम चिकन बाइट तो ब्रेफर रोड तो तुहानूं सारयां नूं सलाम कहिंदे आ। नाइम साहब ये बासी गैरेज है ए जूनियर स्कूल दे कोले फाटाउन ते उन्हां दी सारी टीम ने तुहानूं सलाम किया।

फहद साहब कह लगे जी क्या ही बात गजल जड़िया अजकल बड़िया डूंगिया डूंगिया सुना रहे हो जिन्हों के मीनिंग जिन्हों के मतलब बड़े डूंगे बहुत शुक्रिया जी एहो जिया तारा भी कदे शेर देनिया चाहिदियां तुसी रेडियो सुन रहे हो रेडियो संगम अपने दोस्त निर्मल सिंह दे नाल मेरा और तुहाडा साथ तकरीबन हुण अद्धे कु घंटे का रह गया महबूब इलाही साहब ये भी ब्रेडफोर्ड तो है तो इन्होंने भी किया भी तुहाडा प्रोग्राम जी बड़ा प्यारा लग रहा निर्मल जी हाँ जी असी बंदे ही प्यारे प्यारे हैं की करिए इन्ने क प्यारे हो चुके हैं कि साडा रंग भी काला हो गया प्यार प्यार दे विच अब्दुल क्यूम जमाती रौद्रम तो है ऑलवेज साढ़े नाल रेंदे है रेडियो संगम नू बेहद प्यार करदे है और सारे ही रेडियो प्रजेंटर्स की हौसला अफजाई करते रहते हैं अमजद गुजर उमर कमर इन्होंने गीत सुनने इन्होंने गजल सुननी चाहिए कहते जी इन्होंने ना कर दो हो गया जी आपा कड़ा कितों कुछ लैन जाना पीर ज्यादा महराज दीन मीरपुर पाकिस्तान तुहानू सारा नू सलाम कहिंदे आ साबर अली ओकाड़े दे नेड़े कहिंदे जी असीं रहिंदे आ पाकिस्तान मैडम मुन्नी बेगम इन्हां दियां भी गजलां बिहारियां बड़ियां प्यारियां होंदियां और इन्हां दी आवाज भी बड़ी मिठी है लो तुसी भी सुन लो आ मिठा थोड़ा जा तुसी भी खाओ बेवफा से भी प्यार होता है वाह वेखो लिखण वाले ने की लिखा पता है भी ये बेवफा है फिर भी उन्हें प्यार कर

0: ब्रेक आ रही है ब्रेकों तो फौरी बाद फिर आ जाना फिर बेवफा से प्यार करांगे क्योंकि बेवफा से भी प्यार होता है मुन्नी बेगम रेडियो संघ की पेशकश ओ तुहाडे सारयां दे ही ना
1: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
2: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
3: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है?
4: हाँ जी याद है.
3: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
4: हाँ जी चाहिए.
3: चांदी चाहिए?
4: हाँ जी चाहिए.
3: कहाँ से लोगे?
4: Chacha Jewelers.
3: फिर से बोलो
4: चाचा ज्वेलर्स
3: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
4: चाचा ज्वेलर्स
1: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
5: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. टू 6:30 p.m. 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
7: जागते रहना, जागते रहना.
8: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
7: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है. आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
8: स्टॉप? अरे वाह. पराठा स्टॉप?
7: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
8: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
7: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
9: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549 947. That's 01484 549 947.

गुप्ता सेमा मनोवर साहब तो इन्हों की सारी टीम जफर इकबाल साहब इश्तियाक साहब माजिद साहब अजरा साहबा राणी साहबा नसरीन अख्तर साहबा नसरीन जी साढ़े बहुत ही प्यारी प्रजेंटर भी है बहुत ही वधिया प्रोग्राम लैके तुहाडे मनोरंजन वास्ते आउंदे है इन्हां सारे ने हैलीफैक्स तो तुहानू सलाम किया

मतलूब साहब कहते जी मेरा सलाम देना ना भूल्यो बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम तो चलो एक होर आपां गजल सुन दी कोशिश कर दिया प्रतिभा सिंह हंगल दी आवाज है रेडियो संगम दी पेशकश तुहाडे सारयां दे नाल तुसी सुन रहे हो रेडियो संगम तुहाडा अपना साथी निर्मल सिंह पंजाब वाला चंडीगढ़िया लो सुनो फिर प्रतिभा सिंह दी आवाज़

सदाकत साहब हाजी स्टोर तो कह लगे जी इत्थे दुखी आत्मावां ते तड़पदियां आत्मावां तुहानू याद कर दियां कहिंदे कहिंदे जी कोई गजल सानू सुनाओ खा पी के कहिंदे सहारा को निकला हां जी हां लियाकत अली साहब ये भी हाजी स्टोर तो है बड़ी मिलनसार है ते हाजी स्टोर दा सारा स्टाफ तुहानू सारयां नू सलाम कहिंदा आ एक मेरे सामने गजल है अनूप जलोटा दी आवाज है ते उम्मीद है ये तुहानू पसंद आएगी ते यही हाजी स्टोर वालू मैं भेजदा अज तुसी इन्ने क नाल ही गुजारा जरूर करना क्योंकि टाइम नहीं रहा

मेरा और तुहाडा साथ इत्थों तक दा सी ते कल आपां फिर 3 तो 5 बजे तक रेडियो संगम ते मिलांगे तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसी मेरा साथ दित्ता दौरान प्रोग्राम किसी किस्म की कोई ऐसी गल हो गई होवे ऐसी कोई गलती हो गई होवे कोई ऐसा लफ्ज जो तुहाडे ना पसंद होवे या कोई ऐसा गीत संगीत तुसी सुनना चाहे ते मैं सुना ना सकिया अपना दोस्त समझ के माफ करियो क्योंकि जेडे दूसरे नु माफ करदे है तो दो जहां दा वाली उन्हां नु माफ करदा ब्रेव हार्ट मेरे तो बाद आमिना साहबा ने आना उन्हां दे भी प्रोग्राम बड़ा ही प्यारा हुंदा बहुत अच्छा प्रोग्राम बना के लेके आउंदे जिस तरह तुसी मेरा साथ दित्ता इसे तरह तुसी उन्हां दे भी नाल नाल रहना उन्हां दा भी साथ देना उम्मीद है तुहानू उन्हां दा भी प्रोग्राम पसंद आएगा थैंक यू वेरी मच अपना ते अपनियां दे नाल दियां दा रखियो ख्याल अपनियां दुआवां दे विच निर्मल सिंह नू ते रेडियो संगम नू रखियो याद थैंक यू वेरी मच गुड बाय

0: Terms and conditions.
1: Lanika!
0: Lanika! अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
1: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
0: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं
1: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
0: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
1: कंजूस कहेंगी उनका बुफे मंडे टू थर्सडे 22.99 फ्राइडे टू संडे 24.99 अंडर 10 11.99 एंड अंडर 4 फ्री
0: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
1: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
2: जागते रहना
3: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
2: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
4: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
5: वेलकम है गाइस आप सबका अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद एंड आदाब कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे तो गाइस आप सबका भी एक दफा मैं स्टार्टिंग में वेलकम करूंगी और आप सुन रहे हैं रेडियो संगम एफएम आमना के साथ के दिन आए। और जैसा कि हमेशा की तरह मेरे प्रोग्राम का आगाज होता है खूबसूरत सी बात के साथ और वो कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है कीमत मौत की नहीं सांस की होती है दोस्त तो बहुत होते हैं दुनिया में
6: ये मदहोशियों
5: कीमत दोस्ती की नहीं प्यार की होती है मोहब्बत से लेकर नफरत तक किसी भी मकाम पर धोखा देना जायज नहीं तो जिस स्टूडियो में टाइम हुआ चलता है 5:07:07 आज की डेट 3 मई 2026 में आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम संगम आमना के साथ स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं कॉल स्टूडियो नंबर 01484817705 व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने पसंद का कोई भी खूबसूरत सा गाना मौसम की मुनासबत से अपने खूबसूरत सुनने वालों को डेडिकेट कर सकते हैं मेरा साथ निभा सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा और मुझे आप सबका साथ पसंद आएगा तो जी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 07444202155 और अब आपकी अब आप सबकी नजर मेरी तरफ से मौसम की मुनासबत से खूबसूरत सा गीत बरसात के दिन आए कुमार सानू एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाजों में

तो जी एक दफा फिर से वेलकम कहूंगी आपको अपने प्रोग्राम में. आप सुन रहे हैं आमना को. वालेकुम अस्सलाम. यूजर आपका नाम दिस इज आरजे थोके. वेलकम है आपका जी. वेलकम है. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूं. आप बताइए आप सब कैसे हैं. तो जी प्रोग्राम में हम साथ साथ शामिल करेंगे आपके खूबसूरत से मैसेजेस और कॉल भी लेंगे. आपके पसंद का गीत आपके सुनने वालों तक भी पहुंचाएंगे.

क्योंकि आपने जो सॉन्ग का मुझे बोला है ना, मैं ढूंढती हूँ और क्यों करती हूँ, अगर हो सका तो नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए मैं ये प्ले ज़रूर करूँगी। उतनी देर आप ये वाला सॉन्ग एंजॉय कीजिए।

तो बिल्कुल जी, कहते हैं ना कि हाल अच्छा हो तो हो जाते हैं चुप लोग यहाँ, वरना हर एक को बतलाइए अब कैसे हैं। जख्म भर जाते हैं मगर उफ ये खुरचने वाले, रोज आ जाते हैं पूछने दिखलाइए अब कैसे हैं। इसलिए कहते हैं जिंदगी में हमेशा ना संजीदा लोगों को शामिल रखें, जो हजार इख्तलाफात के बावजूद इखलाक को मद्देनजर रखते हुए एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हैं।

तो जी वेलकम कहेंगे हम शवाना जी आपका और सुल्ताना जी हडर्सफील्ड से हैं मेरे साथ, उनका भी वेलकम कहूंगी लेकिन आपकी कॉल मैं दो मिनट के बाद उठाऊंगी। प्रोग्राम पसंद करने का, प्रोग्राम में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शवाना जी आपको सॉन्ग पसंद आया ना, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

तो जी प्रोग्राम में मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया शवन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको सॉन्ग पसंद आए, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर मैं ना सच में माजरत हूँ, यहाँ पे तू मेरे लिखा तो इतने खुल गए हैं ना सॉन्ग के, बस अब जैसे ही मुझे मिलता है ना मैं नेक्स्ट आपके लिए प्ले जरूर करूँगी। और वो कहते हैं ना कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप।

और कहते हैं ना कि सारे दरिया सब समंदर मुंतजर हैं आपके, जाइए बहिए मेरी आंखों से, क्यों जारी हैं आप? उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, आपके दरबार की आदत है दरबारी हैं आप। आपकी आज़ादियां हैं आप ही के हाथ में, जिस पे कुदरत भी है नाजा वो गिरफ्तारी हैं आप।

तो जी प्रोग्राम में अभी हम अगला गीत शामिल करेंगे, खूबसूरत सा गीत है आशा भोसले कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज़ों में, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। और मैं ना सच में माजरत हूँ, मैं जैसे ही मुझे मिलता है मैं ज़रूर प्ले करूँगी।

जी प्रोग्राम में मेरा साथ दिया है सुल्ताना जी की कॉल थी. सुल्ताना जी आप इतनी अच्छी दुआएं देती हैं, इतना अच्छा बात किया आपने ना, आप बहुत अच्छी बात करती हैं, तो हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया. और सबसे बढ़कर आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. तो जी प्रोग्राम में टाइम हुआ चलता है 5:35:28. आज की डेट 3 मई 2026 में आप सुन रहे हैं आमना को. अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन से रेडियो स्टूडियोज का नंबर आप नोट कर लीजिए, कॉल कीजिए. आप कॉल कर सकते हैं 01484817705 पे. व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने पसंद का खूबसूरत सा सॉन्ग अपने खूबसूरत सुनने वालों को डेडिकेट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर वही पुराना हमेशा की तरह, नई याद तो मैं याद करवाती चलती हूँ, 07444202155 पे. और अब आप सुनेंगे अगला गीत हमेशा हमेशा कमार सानू एंड साधना की आवाज़ में.

तो जी प्रोग्राम में अब हम अगला गीत शामिल करेंगे, खूबसूरत सा गीत है, उदित नारायण एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाजों में आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। और वो कहते हैं ना कि इंसान की आदत है कि वो अपनी मनफी रवैये और दिल खराश लहजे से लोगों को खो देता है, और जब लोग उससे दूर हो जाते हैं तो इल्ज़ाम तराशी और किरदार कशी करना अपना फ़र्ज समझता है। याद रखिए इज्जत हर रिश्ते की अव्वलिन तरजीह है। अगर लोगों को जलील करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं तो लोग आपको छोड़ते जाएंगे, ये उनका हक है।

वेलकम कहेंगे जी आपको एक दफा फिर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं सुल्ताना जी हडर्सफील्ड से और शमशेद। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? और कहते हैं ना कि जब तक आप अपने माजी के जख्मों को नहीं भरते, आपकी तकलीफ का जहर उन लोगों की जिंदगियों में भी शामिल होता रहता है जिनका आपके जख्मों से कोई लेना देना ही नहीं। लगी कैसी ये गली। प्रोग्राम में शामिल करेंगे अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, मौसम की मुनासबत से। आज मेरा दिल है मैं सारे मौसम के मुनासबत से ही ना आप सब सॉन्ग चलाऊं जो आप सबको बहुत पसंद आए। लगी कैसी। और गीत के साथ ना और भी बहुत सी पुरानी यादें हैं जो इंसान कभी नहीं भूलता। किशोरदा की खूबसूरत सी आवाज में रिम जिम गर सावन।

वेलकम बैक कहेंगे जी आपको. और इससे पहले कि ब्रेक टाइम हो जाए, प्रोग्राम में मेरा साथ दिया था किंग जी, आपका बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया. और शमशेर जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं. प्रोग्राम में हम नए पुराने सब गीत साथ लेकर ही चलेंगे, कुछ मेरी पसंद के, कुछ आप लोगों की पसंद के, इस उम्मीद के साथ कि आप सब सुनने वालों को पसंद आएंगे.

0: तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirklieswellnessservice.co.uk Kirklees Council Wellness Service, हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ी।
1: जागते रहना
2: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
1: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
2: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप।
1: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना। और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
1: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484542700।
4: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
5: तो जी वेलकम कहेंगे एक दफ़ा फिर से आपको, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम में टाइम हुआ चलता है 6:06:25 का। आज की डेट 3 मई 2026 में आप सुन रहे हैं आमना को।
6: है मेरी बिल्कुल खाम भी जिंदगी से भाग कर आया हूं।
7: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।
8: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी।
5: ना जी ना, हम आ गए और आप हमारे साथ, आप सब भी हम इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं। प्रोग्राम में साथ देने का बहुत शुक्रिया।

स्टूडियो नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 01484817705 पे. आप व्हाट्सएप पे मेरा साथ दे सकते हैं, अपने खूबसूरत सुनने वालों को अपने पसंद का खूबसूरत सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर 07444 202

तो बिल्कुल जी देर मत कीजिए, कोई रूठा है कोई भी खफा है उसको मनाइए, कॉल कीजिए, जा सकते हैं तो पास जाके उनको मनाइए।

0: ना जी ना, अभी देर नहीं हुई है, आप जाइए और मनाइए, खोल कीजिए. और कहते हैं ना कि खिजां के गिरते पत्तों को हकीर मत समझिए, क्योंकि उन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है.
1: जो कहना

सॉरी गाइस, मैं भी थोड़ा सा ना पुरानी यादों में चली गई थी, क्योंकि इस गाने से ना मेरी तो बड़ी खूबसूरत सी यादें, इतनी खूबसूरत सी यादें हैं ना इस गाने के साथ कि मैं जैसे बोलती हूँ ना, कुछ यादें हो रह जाती हैं साथ में। तो ये गाना भी ना उन्हीं यादों में से खूबसूरत सा हिस्सा है। शबाना जी बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं ना कि पुराने लोग ना समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे, अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं।

प्रोग्राम में ना आप सबका साथ हो ना तो सच में दो घंटे कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता. तो बस ये टाइम हुआ चलता है 6:13:42. आपका और मेरा साथ ना कुछ ही लम्हों का रह गया है. शबाना जी मुझे लगता है हम सब ना एक ही कश्ती के सवार हैं. और वो कहते हैं ना कि दो चीजें ऐसी हैं जिनमें से किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट, दूसरी आप लोग बताइए. मैं वेट करती हूँ आप लोगों का.

0: आप लोगों को मैं ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, इसमें से आप लोगों ने चूज करना है. पहली तो एक तो है मुस्कुराहट, मेरे अलावा सबकी मुस्कुराहट कायम रखे, और दूसरी वो है जो बिना कहे बिना मांगे ही मिल जाती है. और
1: सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया,
0: और सीधी अर्श तक जाती है.

बिल्कुल जी, शबाना जी ने फटाफट ही गेस कर लिया है। और वाकई में दो चीजें ऐसी हैं जिनमें से किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, हमेशा बांटते रहें।

शिवाना जी आपका गाना मैंने क्यों किया है और आपसे मैं सच्ची बोलूं, कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो मैं पहले ही ये क्यों कर चुकी थी, क्योंकि मैंने आज जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में ही बोला था कि नए और पुराने गानों को साथ लेके चलेंगे। इस गाने के बाद ना मैं ज़रूर वो आपके लिए प्ले करती हूँ और आप सब सुनने वालों के लिए भी। कहते हैं दुआ में ताखीर आपकी तलब से आती है और ताखीर आपकी बेहतरी के लिए होती है।

तो जी प्रोग्राम में टाइम हुआ चलता है 6:21, मैं साथ साथ आपको ना टाइम याद करवाती रहती हूँ ताकि आपको भी महसूस हो कि हमारा टाइम कितना रह गया है, बस कुछ ही लम्हों का है। तो बस जी जैसा कि कहते हैं कि आप पानी जैसे बने जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, पत्थर जैसे मत बने जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेते हैं।

तो जी ये खूबसूरत सा गाना शबाना जी की बहन उसको डेडिकेट करूंगी और आप सब सुनने वालों को किशोर कुमार और लता जी की खूबसूरत सी आवाजों में

तो जी मैं उम्मीद करूंगी शोभाना जी आपको और आपकी बहन को गीत पसंद आया होगा। और कहते हैं ना कि अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद गवाही देगा। प्रोग्राम में अगला गाना, अगला गीत हम शामिल करेंगे जी आंखों से तूने क्या कह दिया, कमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाजों में। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं।

जी प्रोग्राम में आपका वेलकम कहेंगे, पीर सादा आपका वेलकम कहूंगी मैं, और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूं। आप बताइए आप कैसे हैं। प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 01484817705 पे, मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप शामिल हो सकते हैं।

सुल्ताना जी मैं माज़रत चाहूंगी, मैं दूसरी कॉल पे थी। प्रोग्राम में सॉन्ग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तो जी ये खूबसूरत सा सोनू निगम की खूबसूरत सी आवाज़ में आप लोगों की नज़र करूंगी, खूबसूरत सा सॉन्ग। शबाना जी आप इधर ही हैं तो इस सॉन्ग से भी आपकी बहुत सी, अगर मेरी यादें बहुत सी हैं इस सॉन्ग के साथ, तो आपकी भी बहुत सी यादें होंगी।

तो कहते हैं ना कि बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। एक इंसान को पहले सुनना चाहिए और उसी से बोलने का फन सीखना चाहिए।

सुल्ताना जी, मैं सुल्ताना जी हैं हमारे साथ हडर्सफील्ड से. मैं सुल्ताना जी, आपने जो कहा है ना सॉन्ग का, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझे मिल जाए. उतनी देर आप ये गाना

कहते हैं ना कि बदगुमानी बहुत बुरी चीज है ये इंसान को वो भी तसव्वुर करवा देती है जो सिरे से हो ही ना रिश्तों की हिफाजत मोहब्बत और खलूस से ही की जाती है ना कि बहस से

तो जी प्रोग्राम में टाइम हुआ चलता है 6:46 का, आपका और मेरा साथ कुछ ही लम्हों का रह गया है। मैं जाने से पहले सुल्ताना जी, मैं जाने से पहले पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए कोई सा भी उनका एक कोई सा भी सॉन्ग लगा दूं।

तो जो प्रोग्राम में आखिरी गीत मैं शामिल करूंगी सुल्ताना जी की, आप सुल्ताना जी आपके लिए इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा, और मैं आप सबसे अब इजाजत चाहूंगी, आप सबके साथ का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे अगले इतवार, अगले संडे 5 से 7। और जाते जाते आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें, अपना और अपने साथ सब अपने प्यारों का सब अपने प्यारों का ख्याल रखें। और प्रोग्राम ख़त्म करते हुए ही मैं खूबसूरत सी बात के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। कहते हैं ना कि मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाएं। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।

0: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
1: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
2: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है?
3: हाँ जी याद है.
2: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए.
2: चांदी चाहिए?
3: हाँ जी चाहिए.
2: कहाँ से लोगे?
3: Chacha Jewelers.
2: फिर से बोलो
3: चाचा ज्वेलर्स
2: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
3: चाचा ज्वेलर्स
4: केड़ी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
5: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
6: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 a.m. टू 6:30 p.m. 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE. Telephone number 01422342553. Get down there for some great bargains.
7: क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
9: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
10: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
8: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
7: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
8: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
11: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
12: अभी कॉल कीजिए 01484549947
7: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
13: LEMFI means a quicker and safe way to send money
14: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates
13: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
13: Download the LEMFI mobile app today.
14: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500...

0: explosion at a house in Bristol this morning. Three people, including a child, have been taken to hospital with minor injuries. Detectives aren't treating it as a terror-related incident. Residents have been evacuated from neighbouring homes. Superintendent Matt Ebbs from Avon and Somerset Police has this update.
1: Officers are also carrying out inquiries at another property in Speedwell, which is linked to the man who died. We know this incident will be of great concern to those living in the affected communities, and our neighbourhood policing teams will be carrying out patrols to provide reassurance.
0: A 16-year-old girl and a woman aged 20 have died trying to cross the English Channel in a small boat. French officials say a dinghy carrying 82 passengers ran aground on a beach this morning after a reported engine failure. Green Party leader Zach Polanski says it wasn't appropriate for him to share a post on social media suggesting the handling of the Golders Green terror suspect was heavy-handed. He's apologised for the forum used and will meet the Metropolitan Police Commissioner. Legendary former Manchester United manager Sir Alex Ferguson has been taken to hospital. The 84-year-old is understood to be conscious and has had precautionary checks. While at Old Trafford, Manchester United secured Champions League football for next season with a thrilling 3-2 Premier League victory over Liverpool. Just 3 days after signing a new long-term contract, Kobbie Mainoo got the winner.
2: To be able to turn it round the way we have done, it's a credit to all the players and the manager as well. And we're just looking forward, you know, and we still need to finish the season strong. It's not enough for us, we just want to keep on winning, winning, winning.
0: Elsewhere, Bournemouth got past Crystal Palace 3-0 to move up to sixth, boosting their European hopes. Fifth-placed Aston Villa are just kicking off at home to Tottenham. And in the Scottish Premiership, Celtic are level on points with leaders Hearts following a 2-1 win at 10-man Hibs. That's the latest. I'm Anna Bates.
3: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
4: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदन उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
5: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
6: इन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश
7: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 6771 mobile 07971092790 please remember branches in Birmingham Manchester and Sheffield also
8: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.

अदनान नसरे थैंक यू सो मच फॉर द टाइम और पे खोर खार की वालेकुम सलाम से बिल्कुल ठीक ठाक ही मताओ संगे जोड़े खुशहाल है उसे सलमान हम दे सलमान जमा रेगुलर लिसनर थे अकेले कल माउरी कल पकी छुट्टी हो मुके कल गैर हाजिर शी दुआनो तो बखेर आले प्रोग्राम की तासु दुआनो ता वेलकम को म बखेर आले उस्तरी मशे

जाहिद खान दा टाइम और रिड्यूस ब्रेक थैंक यू सो मच से बिल्कुल फिट फाटा संग जुड़े ओडीर मनना थैंक यू बिल्कुल मा टाइम बदल के प्रोग्राम जवा नॉर्मली टाइम जिक मु 2 बजे न वाखले तर 3 बजे पूरी आवाज बस मा टाइम चेंज वे न अब वो बजे न वाखले तर नख बदल 10 बजे पूरी नख पूरी ना बिल्कुल 10 बजे पूरी और एवरी संडे भाई वज हम आगादा को टाइम जिक मु देनो अगर चेंज द सब मजबूर है द कार द हवाली सर नो यकीन चितासो माउस हम जॉइन कोई पर दे टाइम के हम संग जी द दोलस बुजनो अखर द्रयु बुजु प्रतासो मासर मलगरतिया कोल नो उम्मीद कोम चोस बहुम तासो मासर मलगरतिया कोई प्रोग्राम के प्रसर मलगरी

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable. Specializes in bridal wear, groom's wear and children's clothing for all occasions.
3: Visit karein Bobby Fashion. Mention karein Radio Sangam ka naam aur paye £100 ki chhoot on bridal wear.
2: Also, more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
3: Amazing Asian clothing. Also, made to measure. Orders with perfect fitting.
2: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield, HD1 6LQ.
3: Call 01484 769926.
2: Bobby Fashion, fashionable living.
0: And now with a free gift with every purchase.
4: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
10: रोतों को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM
11: जी तस्वीर के लिए दुशार कमर्शियल ब्रेक ना बाद दिस इज रेडियो सिंगम 107.9 FM जिम्स तसरूर सईद तस्वीर के लिए मैं प्रोग्राम की लस मिनट कम मत बजे के दुन के दियो द बाचा से बवाजम बिल्कुल नेख पनी गराले पर क्यों क्या लड़ी द बाचा से टपी लगी देली और असर मल गए दा टाइम दे जाकिर जे दा टाइम मौरी द पुलिस के गहम दा टाइम ड्राइव के रवान दे मैनचेस्टर तक मोटरवे बंदे मुसाफ सवाज और मां बेच द बाचा से टपी रा तो प्ले के बिल्कुल माल लड़ी क्यों के लगे बोली او دغه ټفو سره سره بیا منګزو یو وړبل سندر هم د بیا کمرشل بریک ټایم کې دوه والی ځکه چې دا سو و منټ دی بیا دوه منټ بیا بل سندرې دا غین بعد بیا کمرشل بریک او بیا تاسو سره کلی ته پروګرام په دوه مګنټه کې دا ته بچونه بعد تاسو هم کولی شئ چې کال راته وکړئ په 01484817705 او دغه نه علاوه میسیجز هم کولی شئ نارمل میسیج کې تاسو موږ ته کوئ نو وی ډونټ ریسیو نارمل ټیکسټ میسیجز only whatsapp messages banga receive ko no agata so po whatsapp bandi sumra messages ko ino po whatsapp bandi koi normal messages chukam deno manga gan receive ko no bilkul agaz program ke shamil ho ma sta super maisham darazi che bacha se bawaz wa aur bya milavi ko ta sara padve maganta ke program da to pachuna pat no razi che wa aur da sandar bya milavi

नेक्स्ट जो बसंदर ताहिर शबाब बसंदर वही अरस्ता पनंगू की दसंदर का टाइटल दसंदर परमासर टाइम मेहरान मलगर जी टाइम और एलिफेंट की लंदन दुराची दा संदर और उसमर मलगर जी लाइव दा टाइम मगूर नो दागी पर हम दा संदर राजी छु और ब्याह मिला भी गुदा संदर ना बात

जरस्ता पनंगो के चिदचा द मिनी रंग दे तसवर द तायर शबाब आवाज ओ यकीनन चता सब संदर खखड़ी लव जिसम रमलगिरी द टाइम मा सर मलगिरी ट्रो दर कले सिरमे शो बखैर अलैकुम कमजे के द टाइम मा और इन जरूर द खपल जे नो मेंशन कोई च मा तो पता लगे च प्रोग्राम ता सुकम कमजे के और नेक्स्ट है कम संदर द सब पर प्ले को मा गा द जर खान आवाज दे पसफली के लेवंतो द अजर खान आवाज़ न दे द मलगरी परमाइश कड़े दे खुदा द इनातुल्ला आवाज़ दे और मलगरी देरा सरदार टाइम अबिद थैंक यू सो मच डीर मंद नडीर शुक्रिया द टाइम और मैनचेस्टर की नो राजी चेदा संदर और स्टोर जिसम मलगरी द टाइम मसर लाइव दी दागील पार आग मलगरी चेदा टाइम ड्राइव दौरान की कम से तम तस ड्राइव कहो पर ड्राइव बांधे उस पार हम और ब्या मिलावी गु द इनातुल्ला द दी आवाज़ न बात Gracici inaitullah soy bis farliki levanto Gracici bauru jida sumre levanto de bis farliki vakhili levanto bi bis farli avagani sajbavi udiri badali de nur musmunan

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मजाफात में अब वक्त हुआ जाता है अजान मगरिब का। ये अजान हाजी जूलस हैलीफैक्स किताबुन से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमामीन।

अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात आपके साथ रेडियो संगम।

0: जागते रहना जागते रहना
1: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
0: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
1: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
0: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
2: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
0: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
3: लॉक इट इन एंड रिप द नॉब ऑफ
4: एक्सक्यूज मी माय आईफोन डजंट हैव अ नॉब
3: Radio Sangam, 87.9 FM.

0: की।
1: इतनी चोरी होती है आजकल, सोना रखूं तो रखूं कहां?
2: इसमें घबराने की क्या बात है, द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना, 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE, टेलीफोन 01422485679, ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com, द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स, सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस, इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, 1 year कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस, 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम विद मल्टीपल साइज बॉक्सेस. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road, Halifax, HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewelers.
3: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
4: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
5: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
6: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
4: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
3: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
4: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
7: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
6: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
3: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
8: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
9: आर यू पीपिंग टॉम?
8: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस. इट वाज ब्रोकन, यस, इट वाज पॉइंटलेस. देन इट हिट मी, एडवर्टाइजिंग ऑन दिस लोकल रेडियो station's the answer. It's low cost, effective and memorable.
10: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
9: Come up and see me sometime.
8: Case closed.
11: Lock it in and rip the knob off.
12: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
11: Radio Sangam, 87.9 FM.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: हां भाई बच्चों कल का सबक याद है
5: हां जी याद है
4: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
5: हां जी चाहिए
4: चांदी चाहिए
5: हां जी चाहिए
4: कहां से लोगे
5: चाचा जूलर्स
4: फिर से बोलो
5: चाचा जूलर्स
4: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
5: चाचा जूलर्स चाचा जूलर्स
6: केडी ऑफर लाईया वा सानू भी तो दसो
7: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
8: चाचा जूलर्स ओपन

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
2: Roton ko asane wala, dilon ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.

0: a 2-1 victory at Aston Villa. Celtic won at 10 man hips by the same score to move level on points with Scottish Premiership leaders Hearts. And after a dramatic race, the Miami F1 Grand Prix was won by Championship leader Kimi Antonelli. That's the latest. I'm Faye De Silva.
1: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
2: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
3: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
2: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
4: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
5: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
6: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
9: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
11: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
12: आर यू पीपिंग टॉम?
11: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
14: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
15: Jagte rehna, jagte rehna.
16: So jaunga to kya hoga bhai?
15: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se red जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
16: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
15: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना. और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
16: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
15: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484 542700.

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम हडर्सफील्ड और उसके मज़ाफात में अब वक्त हुआ जाता है अजाने इशा का।

0: अगर आप भी सदकाए जारिया के तौर पर एक अजान स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अभी रेडियो संगम से राब्ता कीजिए ऑन 01484549947। दिन रात रेडियो संगम। क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
1: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
4: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
3: Abhi call kijiye 01484-549947.
0: Training will be provided.
5: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
6: Are you peeping, Tom?
5: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
0: सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश।
4: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924 466771, mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
0: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

रोतों को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM

0: Lock it in and rip the knob off.
1: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
0: Radio Sangam, 87.9 FM.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए। वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं। वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं, प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं। आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
9: अभी कॉल कीजिए 01484549947
4: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
10: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
11: आर यू पीपिंग टॉम
10: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
12: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
11: Come up and see me sometime.
10: Case closed.
13: जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول कीमतों के साथ मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश
14: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1 154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA टेलीफोन 01924 466771 Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: Jesus.
1: Hello? Who's this?

0: iPhone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.
2: आयो तेरी अंग्रेजी.

0: Radio Sangam team now on 01484549947. That's 01484549947.
1: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
2: हाँ जी याद है।
1: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: चांदी चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: फिर से बोलो।
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स। चाचा ज्वेलर्स।
3: केड़ी ऑफर लाइया वहाँ सानू भी तो दसो।
4: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
5: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।
6: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल local advertising.
7: Are you peeping, Tom?
6: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.
9: Handi, Sasigaldi.
10: Handi.
9: मैं ना मिटिए मैं तेनू बड़ा ही प्यार कर
10: गल सुन मेरी मैं इतने पढ़न आनी हूँ आशकियाँ मारन नहीं नाले जे एम ए प्यार करता ना मैनू मेरे मापे तो मंग जाती

0: को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM
1: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
4: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
1: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
2: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
5: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
4: अभी कॉल कीजिए 01484-549947.
1: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
6: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
7: आर यू पीपिंग टॉम?
6: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.
1: नफ्सिन जायकतुल मौत. हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश.
5: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड ड्यूसबरी वेस्ट यॉर्कशायर WF13 2HA. टेलीफोन 01924 466771. Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
3: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
6: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
7: अभी कॉल कीजिए 01484549947
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
8: जागते रहना
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सबसे रेड होगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
9: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
8: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
8: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
10: लॉक इट इन एंड रिप द नॉब ऑफ
11: एक्सक्यूज मी माय आईफोन डजंट हैव अ नॉब
10: रेडियो संगम 87.9 FM
12: East Coast, my people. New York in a hat.